0: ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ, ଜଳଠୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ବାୟୁ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର, ସମୟ ପ୍ରାତଃ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रूपये जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत और विकास

0: कार्य पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदव बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइट्रेन मॉर्निंग ड्वेवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଭକ୍ତିଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्रीराम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्रीराम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि मंगलवाद्यों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है। किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बालहंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हों।

0: अष्टशतोत्तर सप्तसहस्र कोटि रूप्यकाणि महाराष्ट्र राज्यं च द्वाविंशत्यधिक सप्तसहस्र कोटि रूप्यकाणि अलभत। ग्लास्गो नगरे प्रवर्तमानास् राष्ट्रमण्डल क्रीडास् भारतम् एकोनचत्वारिंशत् पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगतवत्। भारतस्य पदकतालिकायाम् अधुना त्रयोदश स्वर्णपदकानि, सप्तदश रजतपदकानि, नव कांस्यपदकानि च सन्ति। भारतस्य नूतनपदकं 5000 मीटरमितायां धावनस्पर्धायां गुलवीरसिंहेन प्राप्तं कांस्यपदकम् अस्ति। मुष्टामुष्टिस्पर्धास् भारतेन उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतं, यत्र 7 स्वर्णपदकानि तथा 3 रजतपदकानि प्राप्तानि। पैरा एथलेटिक्स इत्यतस्मिन्नपि भारतेन ऐतिहासिकी उपलब्धिः सम्प्राप्ता। पुरुषाणां शॉट्पुट एफ 57 इत्येतस्यां स्पर्धायां सोमन राणा स्वर्ण पदकं, शुभम जुयालः च रजत पदकं प्राप्तवान्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। तथैव दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु अपि अतिवृष्टि व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: सुनिले संस्कृतरे संवाद रिलेकरी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्लीरु, आकाशवाणी जयपुर। शुणन्तु आज आम केन्द्ररु प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम सम्पर्करे किछि सूचना। सकाळ 7:25 प्रचार करिबु टिकी राइज कार्यक्रम। सुरलहरी प्रचार करिबु सकाळ 8:30 शिल्पी जितेन्द्र पटनायक एवं मधुमिता महांति। सुगम संगीत शुणिबे सकाळ 8:45 शिल्पी बाबुल सुप्रियो, अभिजित, निवेदिता, कुमार सानु एवं सस्मिता विश्वाल। हेलो मो पसंद शुणिबे सकाळ 9:00। सकाळ 10:00 प्रचार करिबु प्रायोजित कार्यक्रम हेलो स्वास्थ्य पाई कथाटिए। पूर्वाह 10:30 शुणिबे ओडिया कथाचित्रर गीत। आकाशवाणी लाइव शुणिबे दिन 11:00। हिंदी कथाचित्रर गीत प्रचार करिबु दिन 12:00। दिन 2:15 भक्ति गीत शुणिबे दिन 12:30। शिल्पीमाने हेले अरविंद मुदुली, नमिता अग्रवाल, बसंत पात्र, ईरा महांती, सुभाष दास, शैल भामा एवं श्रीचरण। हिंदी कथाचित्ररु भक्ति गीत प्रचार करिबु दिन 5:00। दिन 5:20 घर घरणी कार्यक्रम। एथिरे शुणिबे साक्षात्कार महिलामानंक मध्यरे सहयोग ओ सहानुभूतिर भूमिका संपर्करे गायत्री बाहिनीपतिंक सहित। पुणि शुणिबे अन्य एक साक्षात्कार सुस्थ शिशु सुंदर भविष्यत, ए शीर्षकरे डाक्टर दुर्गा पात्रंक सहित। अपराह्न 5:00 प्रचार करिबु जुबवाणी कार्यक्रम। अपराह्न 5:30 चैती जन्ने शुणिबे लाइव फोन इन कार्यक्रम रेडियो के पचारु। एथिरे विषय रहिछि सिकिल रोग बोइले काइटा, ए संपर्करे फोन जोगे आसुथिबा श्रोतांक प्रश्नर उत्तर देबे डाक्टर गोपालकृष्ण नायक। संध्या 6:10 शुणिबे हिंदी कथाचित्रर गीत। श्रीमद भागवत प्रचार करिबु संध्या 6:20। शुणिले आज आम केन्द्ररु प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम सम्पर्करे किछि सूचना। आकाशवाणी जयपुर। परवर्ती कार्यक्रमर घोषणा शुणिपारिबे अल्प समय मध्यरे।

हाँ पिला बने रविवार टा कहानी पेढ़ी रे गुड़ाए कहानी नहीं कि मुसी कहानी न सुनिले ना आम को भल लगे ना तुमको भल लगे तेणुक पिला मने आम सुंदर सुंदर जो कहानी नहीं कि आसु से कहानी रे आम अनेक कथा सीखी था। आज तुम मानक जो कहानी मु कहवाक जाऊँ ता ना है उत्तम बंधु

0: ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ ରାତି 7:25। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କୃଷି ଓ କୃଷକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ରାତି 7:30। ଏଥିରେ ଶୁଣିବେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀଭାଇଙ୍କୁ ଦ୍ୱିପଦ କଥାରେ। ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ ଶୁଣିବେ ରାତି 10। ଶୁଣିଲେ ଆଜି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର, ସମୟ 8:00। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ଏବଂ ପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ଶୁଣିପାରିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
4: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरु में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
5: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं

0: एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1705 मामले दर्ज किए और 1710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है।

0: अपर्णा खुंड आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जोयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण, 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल। रिकॉर्ड शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइया ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गाय

0: के शौक पूरे कर रहा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across 6 districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to 4th position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will launch the nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. More from our correspondent.
3: Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations and more than 125 spiritual organizations will also join the program virtually. Under the campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. The activities will include sports events, walkathons, meditation sessions, cultural programs, awareness campaigns, Nukkad Natak, discussion forums, art competitions and community engagement programs. The initiative aims to inspire youth to stay away from substance abuse and encourage them to become ambassadors of positive social change in their communities. With Soumya Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi has said the potential of youth becomes a driving force only when they find the right opportunities and the right direction to dream big with confidence to realize their goal. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Center, Vivek Smarak, in Mysuru, Karnataka yesterday. The Prime Minister highlighted that today the youth in India are leading the world's third largest startup ecosystem, Atmanirbhar Bharat Mission and Make in India Initiative.
4: आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है। वो मुद्रा लोन के जरिए नई शुरुआत कर रहा है। वो देश की स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को लीड कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान हो, मेक इन इंडिया का अभियान हो, इसकी सफलता के पीछे भारत के युवाओं की ही ताकत है।
2: Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has reviewed the preparedness for the National Eligibility Cum Entrance Test for Postgraduate NEET PG 2026 to ensure the smooth, secure, transparent and technology-enabled conduct of the examination. The exam is scheduled to be held on 30th of this month. A report

0: नेशन वाइड कैंपेन नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान टुडे. यूनियन मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा रिव्यूज प्रिपेयरनेस फॉर नीट पीजी 2026 एग्जामिनेशन एडज एस्पिरेंट्स नॉट टू फॉल प्रे टू रूमर्स. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across six districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to fourth position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shined with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: श्रोता बंधु एतेबेले जाय आपण माने कार्यक्रम सुणुथिले आकाशवाणी दिल्लीरु. कार्यक्रम प्रसारित हेउछि आकाशवाणी जयपुर केन्द्ररु. प्रचार करुछु आधुनिक गीतर कार्यक्रम सुरलहरी. आज पई शिल्पी माने हेले जितेन्द्र पटनायक एवं मधुमिता महांती, गीतिकार हरेकृष्ण मिश्र. तेबे कार्यक्रमर प्रथम शिल्पी जितेन्द्र पटनायक.

0: वाओ, रिमझिम रिमझिम रिमझिम बर्षार ए शब्द सह चलन्तु आरंभ करिबा आजिरो हेलो मो पसंद कार्यक्रम। ओदा ओदा भिजा भिजा पानी पानी ए वर्षा पागरे गरमा गरम चा सहित समय हिछि सुनिया पई फोन इन्तिस कार्यक्रम हेलो मो पसंद। हेलो मो पसंद कार्यक्रम ने आपन को पाखरे अछि मु दमयंती बैकार आ हम फोन नंबर हैला 06854230690 और कार्यक्रम हेलो मो पसंद प्रचारित हुए प्रति रविवार सकाळ 9:00 10:00 जाय। ए गोटे घंटा भितरे आपण माने फोन करंती आपण मानकर कथा कहंती और आपण मानक पसंद रा हिंदी चलचित्र गीत भी सुनंती। तो चलंतु बिल्कुल भी देरी करिबानी आरंभ करिबा आजिरो मो पसंद कार्यक्रम।
1: हेलो दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: अरे नाम घाट से मक्खन वर्मा बोल रहा हूँ दीदी।
0: मक्खन जी।
1: जी दीदी।
0: कहाँ थे मक्खन जी आप इतने दिन?
1: नहीं दीदी मैं तो लगाते ही रहता हूँ।
0: नहीं लगता है।
1: एक बार सर जी से बात करते थे उसके बाद नहीं लगाया हूँ। क्या है कि दो ढाई महीने हुआ है।
0: ऑब्वियसली अभी बारिश का सीजन है, आपका खेती बाड़ी चल रहा होगा।
1: जी दीदी रोपाई काम चल रहा है दीदी।
0: हो गया रोपाई का?
1: एक दो दिन का बकाया है दीदी।
0: तो बारिश तो ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत है क्या?
1: बारिश दीदी बाढ़ बहुत आया है। नहीं दिक्कत तो नहीं है दीदी।
0: अच्छा है
1: जी दीदी।
0: हाँ और क्या बोलना चाहेंगे? आपका फोन नहीं लग रहा था लेकिन प्रोग्राम सुन रहे थे कि नहीं?
1: नहीं दीदी तो प्रोग्राम तो सुनते हैं दीदी, जब तक जीवन रहेगा तब तक आपका प्रोग्राम सुनेंगे दीदी।
0: बहुत
1: तो
0: अच्छा
1: से सुन रहे हैं दीदी।
0: हाँ, हाँ। तो मक्खन जी आपका तबीयत थोड़ा खराब है क्या? थोड़ा थके
1: नहीं,
0: हारे
1: नहीं,
0: बात कर रहे हैं।
1: ऐसी आवाज है।
0: ऐसे ही आवाज है
1: जी दीदी।
0: अरे बारिश अच्छा है, फसल अच्छा हुआ है, खुशी खुशी रहना चाहिए ना।
1: जी दीदी। नहीं दीदी ऐसी आवाज है।
0: अच्छा बोलिए कौन सा गाना सुनेंगे?
1: आज सुनना है दीदी आया सावन झूमके बदल छाए के झूले। जी दीदी
0: चलिए गाना सुनते हैं और सावन का मजा लेते हैं। धन्यवाद
1: हमारे फोन कॉल शामिल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अरे वाह धन्यवाद आपको भी।

0: नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार, बोलिए।
0: मैं जम्मू कश्मीर जिला उधमपुर से केवल सिंह बात कर रहा हूँ मैम।
1: केवल सिंह हो आप?
0: यस मैम।
1: जिला उधमपुर?
0: हाँ जी, जम्मू कश्मीर।
1: शायद पहली बार फोन लगा रहे हैं आप?
0: जी मैम, मेरा फोन तो पहली बार ही लगा मैम।
1: कैसे पता चला आकाशवाणी जयपुर ओडिशा का ये जो स्टेशन से ऐसा फोन इन जा रहा है?
0: जो नए नए श्रोताओं को जब सुनने का मौका मिलता है तो जैसे प्रोग्राम में जितने श्रोता आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ जी, तो क्या करते हैं आप?
0: मैम हम तो खेतीबाड़ी का काम करते हैं, बाकी यही करते हैं। हमारा बिजनेस यही है कि जो पानी बोतल होती है जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सेल करते हैं दुकान पे।
1: जम्मू कश्मीर में हमेशा ठंड होता है, वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस चलता है?
0: मैम इतना तो नहीं होता है ठंड, क्योंकि 6 महीने तो ये काम चलता है, बाकी 12 महीने तो नहीं चलता।
1: अच्छा, तो आप अभी फोन किए हैं, इससे पहले प्रोग्राम सुन रहे थे हेलो मोपसंद?
0: जी जी हाँ, हम सुनते हैं न्यूज ऑन AIR पे सुनते हैं मैम।
1: आज मन किया फोन लगाने के लिए?
0: तो आज मैंने पहली बार ही, पहले भी मैं मिलाता था लेकिन कभी कभी मिलता नहीं है, लाइन बिजी होती है, लेकिन आज मैंने मिलाया तो जैसे मिलाया तो वैसे मिल गया मैम।
1: बहुत अच्छा, बोलिए कौन सा गाना सुनेंगे?
0: मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है।
1: हाँ जी, हमें भी खुशी हो रही है जी।
0: आपसे बात करने का जो मौका मिला तो हमें बहुत खुश हूँ।
1: जी जी जी, धन्यवाद आपको। बोलिए आपका पसंदीदा गाना, क्या गाना सुनेंगे?
0: गाना आप मुझे सुनाइए कि मैम, कि फिल्म का नाम है आराधना और गाने के बोल हैं कोरा कागज था जे मन मेरा, लिख दिया नाम इसने तेरा।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा गाना है।
0: तो कुछ साथियों को याद करना चाहता हूँ, मेरे प्रिय मित्र हैं।
1: हाँ।
0: हिमाचल से गोल्डी जी हैं और शिमला से हैं राकेश कुमार जी। बाकी प्रिय मित्र सुनने वाले सभी बहुत अच्छे ही दोस्त हैं और बहुत प्यारे प्यारे मित्र हैं, और सबको मेरी तरफ से नमस्कार
1: जी, धन्यवाद।

0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से संवाद कर रहा हूँ बहन जी।
1: हाँ जी, आपने अभी जो पता बताया महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से बाहुबली, तो ऐसा लगा कि जैसे छत्रपति शिवाजी की

0: बड़ा सा महल है और उस महल के दरवाजे से सशस्त्र बाहुबली आ रहे हैं एकदम सीना चौड़ा करके, ऐसा इमेज आ गया, ऐसा लगा हमें।
1: क्या बात है।
0: कैसे हैं बाहुबली जी?
1: अरे मैं तो मस्त हूँ, आनंद में हूँ, आपकी मंगल कामना
0: जी, धन्यवाद।
1: प्रभु की छत्र छाया में जीवन यापन मस्त और आनंद के साथ चल रहा है बहन जी।
0: क्या बात है, ऐसे सब लोग आनंद में रहें, मस्त में रहें।
1: और एक बात कहना चाहूंगा कि अभी मेरी उम्र 84 साल चालू है।
0: क्या बात है।
1: और ये 16 तारीख को 85 वर्ष में मेरा पदार्पण होगा।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप 85 ईयर्स की हो जाओगे।
1: जी जी।
0: हाँ, तो आपको इन एडवांस हैप्पी फाटे जन्मदिन की बहुत सारे बधाई हो।
1: अरे क्या बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए और हजारों साल जिए।
1: नहीं हजारों साल तो नहीं, मगर अपनी मनोकामना इतनी है
0: जी
1: कि जब तक सांस है तब तक आनंद और उम्मीद के साथ जीवन चलता रहे।
0: हाँ।
1: यही प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना है बहन जी।
0: क्या बात है, आप ऐसे ही खुशियाँ बांटते चलिए और खुद भी खुशी खुशी रहिए।
1: जी
0: हाँ, क्या गाना सुनना चाहेंगे बाहुबली जी?
1: जी ये एक चित्रलेखा में एक गीत है रफी जी के आवाज में, मन रे तू काहे ना धीर धरे।
0: बहुत अच्छा गाना है।
1: हाँ जी जी, इस गीत में अभी ने मन के बारे में जो मानव का मन रहता है वो विविध वासना
0: जी
1: और विविध प्रकार के प्रलोभन में लग जाता है, मगर अपना संयम से उसको नियंत्रित करना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया है कवि ने।
0: क्या बात है, मन को अपना बस में कीजिए।
1: जी,
0: ये
1: जी,
0: बात आप बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा विचार है। ऐसे बाहुबली जी आप हमेशा ऐसे खुश रहिए और लोगों को ऐसे अच्छा अच्छा बात बोलते रहिए हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जीवन मंगलमय हो।
0: जी।

0: मोपसंद
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते बोलिए।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: कितने टाइम से ऐसा लगा रहे थे फोन?
1: जी अभी मेरे को 10 मिनट हुए लगाते हुए।
0: लग गया?
1: हाँ जी बिल्कुल लग गया और बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: क्या चल रहा है आपका गांव में अभी?
1: जी यहाँ पे 3-4 दिन से बारिश हो रही है।
0: हाँ
1: हाँ, और अभी फसल लगाई हुई है हमने सोयाबीन की।
0: सावन का झूला?
1: जी सावन का झूला अभी तो नहीं पड़ा है लेकिन बहुत जल्दी पड़ने वाला है।
0: अच्छा, क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं?
1: जी उसमें जैसे कि झूला लगता है, उसके आसपास में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो झूलने के लिए आते हैं। और मेरे घर के पास में से बरगद का पेड़ बड़ा है, वहाँ पर ही झूला लगाए थे हम लोग।
0: गाना वाना कुछ नहीं होता है क्या? नहीं गाते?
1: जो गाना होता है ना,
0: हाँ,
1: कुछ लड़कियाँ होती है वो सावन के गाने गाती है और इकट्ठा होकर झूलते हैं सभी बारी बारी से।
0: वो गाना एक लाइन सुनाइए हमें।
1: जी मुझे वो सावन का गाना याद नहीं है अभी।
0: सिर्फ लड़कियाँ गाते हैं क्या?
1: हाँ हाँ लड़कियाँ ही गाती है।
0: अच्छा,
1: और आपको बताऊँ जैसे कि अभी सावन महीने में जो हरियाली अमावस्या आती है ना, उसमें क्या करते हैं कि गेहूँ इकट्ठा करके मतलब एक कटोरी में बोते हैं।
0: अच्छा।
1: 10 दिन पहले, और वो जब उगके थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो उस हरियाली अमावस्या के दिन उसको मतलब ले जाके जल में प्रवाहित करते हैं।
0: क्या बात है, ताकि मछली लोग खा सके।
1: लड़कियाँ ही करती है।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिवाज है। बोलिए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: जी आप सुनवा दीजिएगा बेटा फिल्म का, कोयल से तेरी बोली।
0: ठीक है, चलिए सुनते हैं गाना।
1: जी थैंक यू सो मच।
2: कोयल

0: दीदी सभी सुनने वालों को और आपको प्यार भरा नमस्कार। जय श्री महाकाल शिवालोहट एमपी विदिशा से।
1: कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ दीदी, आप कैसे हो?
1: हम अच्छे हैं। विदिशा में अभी बारिश है ना? बारिश नहीं हो रही है?
0: नहीं नहीं दीदी, बारिश तो यहाँ तो बिल्कुल नाराज है।
1: तो खेती बाड़ी का क्या पोजीशन है उधर विदिशा में?
0: दीदी खेती बाड़ी तो ऐसा है कि कीड़े लगने लगे हैं, फसल नष्ट होने की कगार पे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं पे ज्यादा बारिश है, कहीं पे बिल्कुल बारिश नहीं है।
0: वो तो कुल मिला के दीदी ये है अन्नदाता परेशान।

0: हरी आगे।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जहाँ बारिश हो रही है तो उससे भी परेशान है, और यहाँ नहीं हो रही वहाँ भी परेशान
1: है
0: जी।
1: क्या करें
0: जी बिल्कुल, अपन तो इस बार से दुआ ही कर सकते हैं दीदी,
1: बस दुआ ही मांग सकते हैं कि बारिश हो जाए।
0: जी दीदी,
1: हाँ, खेती बाड़ी ठीक से हो, किसान भाई लोग हंसें।
0: जी दीदी।
1: हाँ बोलिए, कौन सा गाना सुनेंगे?
0: दीदी मूवी का नाम है कल की आवाज, गाने के बोले तुम्हारी नजरों से हमने देखा अजब सी चाह झलक रही है।

0: नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार,
0: हम साबिर परवाना बोल रहे हैं, नाहर मंटोला जिला मधुबनी बिहार से।
1: कैसे हैं साबिर जी?
0: बहुत बढ़िया है दीदी, आप लोग का दुआ ठीक है। आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं, मजे में हैं।
0: हम तो दिल्ली में रहते हैं।
1: आप दिल्ली में हो?
0: जी जी।
1: अच्छा, दिल्ली का क्या मौसम है अभी?
0: अभी तो ठंडापन है, बारिश हो रही है,
1: पानी गिर रही है।
0: जी
1: हाँ, तब तो अच्छा है। बोले, कौन सा गाना सुनेंगे?
0: जी सुना दी। फिल्म का नाम है माँ।
1: माँ,
0: गाने के बोले बरसात में जब आएगा सावन का महीना
1: तब क्या होगा?
0: बारिश होगा।
1: अच्छा, चलिए सुनते हैं गाना।

0: हेलो, मो पसंद आकाशवाणी
1: मो पसंद।
0: जयपुर
1: हाँ मो
0: उड़ीसा।
1: पसंद दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: मैं गंगाधर सावनकर।
0: क्या हाल है आपकी गंगाधर जी?
1: वही दो चार दिन बारिश गिरी दीदी, आज जरा आज सूरज भगवान का दर्शन हुआ। आपके
0: अच्छा,
1: तरफ तो बाढ़ आया बोल तो सुना, उड़ीसा में।
0: उड़ीसा में बाढ़ है, आसाम में बाढ़ है,
1: हाँ
0: कहीं कहीं बाढ़ है, कहीं कहीं बारिश नहीं हो रही है।
1: आपके पास कैसा है दीदी? जयपुर में
0: जयपुर में अच्छा है।
1: चाहेगा?
0: आए हैं कभी ओडिशा जयपुर?
1: अभी आने वाला हूँ मैं, पुरी को आने वाला हूँ।
0: बहुत
1: हमारे पास से
0: अच्छा,
1: संबलपुर ट्रेन है यहाँ से, नांदेड़ से।
0: क्या बात है। तो आकाशवाणी जयपुर से और कौन सा प्रोग्राम आप सुनते हो?
1: अभी फोनिल का कार्यक्रम सुनता हूँ, अब दूसरे तो कोई को सुनता नहीं दीदी।
0: ओडिया लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा आ जाता है समझ में?
1: हाँ समझ में आता है, क्योंकि हमारे पास काम कर रहे हैं और पूरे ओडिया के लोग आए।
0: तब तो अच्छा है ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: हाँ बोलिए, कौन सा गाना सुनेंगे?
1: दीदी, कल मेरा बर्थडे है।
0: अरे वाह, हैप्पी बर्थडे एडवांस।
1: थैंक यू थैंक यू। तो मुझे फर्ज फिल्म का बार बार ये दिन आए।
0: सच में आप हजारों साल जिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कुछ मित्रों नाम लेता हूँ, हमारे तुकाराम जाधव जी, राजेंद्र गंगवार, भगवान सिंह जी, नारायण गायकवाड़ और शाहरुख अंसारी साहब, और हमारे धीरज राबरी साहब, सुनील झा, ये सभी दोस्तों के साथ सुना दीजिए।
0: जी, धन्यवाद आपको।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते जी,
0: नमस्ते। क्या
1: योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: हाल है योगेश जी?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: खेती बाड़ी?
1: हाँ, वो अभी लगातार प्रगति पे है कार्य। अभी तो धान तो सब लग गया है, अभी उसका जो निंदाई कोड़ाई का कार्य होता है, कचरे वगैरह का, वो सब करवा रहे हैं।
0: बहुत अच्छा। जितना धान के लिए बारिश चाहिए पर्याप्त
1: हाँ,
0: हुआ है
1: अभी फिलहाल 4-5 दिनों में अच्छी बारिश हुई है।
0: जी? और क्या लगाएंगे धान के साथ?
1: अभी फिलहाल तो धान के सीजन में धान ही लगेगा, उसके बाद जो धान कटने के बाद वो गेहूं लगाएंगे।
0: ऐसा अक्सर दिखाई देता है ना, घर के सामने एक किचन गार्डन होता है, नहीं तो घर के पीछे
1: हाँ
0: होता है, कुछ कुछ
1: हाँ
0: लगाते हैं उधर।
1: और बाड़ी में सब्जी वगैरह लगाते हैं, जो
0: हाँ,
1: फ्रूट वगैरह है कुछ वो लगा देते हैं, पपीता केला वगैरह।
0: तो ये आकाशवाणी जयपुर से आप सिर्फ यही प्रोग्राम सुनते हैं ना, और कुछ

0: हमेशा
1: ज्यादातर तो फोन ही नहीं सुनता हूँ, संडे को प्रसारित होता है तो।
0: हाँ
1: और मन जैसे और कभी कर दिया ना कि चलो सुन लिया जाए, तो फिर उस समय सर्च मार के सुन लेते हैं।
0: क्या बात है, बोलिए कौन सा गाना सुनेंगे?
1: गाना आप हमें सुनवा देंगे, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता पावन होगा। जी
0: रिमझिम तो बरस रही है सावन अभी।
1: जी
0: चलिए गाना सुनते हैं योगेश जी, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: हेलो,
2: हेलो मैम नमस्कार, बरगढ़ सन प्रभाकर कहूँ।
0: कौन तो को गीत सुनिबे?
2: हाँ गीत सुनवा मैम, जीवन फिल्म रा गीत सुनवा, लता मंगेशकर का आवाज रे झील।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार, बोलिए, नाम पता बोलिए।
0: जी मैं उदयलाल टेलर बात कर रहा हूँ, उदयपुर राजस्थान से।
1: अच्छा, क्या नजारा है अभी उदयपुर का?
0: अभी मौसम बहुत ही सुहाना है, रात से बारिश हो रही है और मौसम का आनंद ले रहे हैं।
1: वही तो मैं पूछ रही हूँ, उदयपुर में जब सावन आती है कैसा दिखता है?
0: अच्छा दिखता है, बहुत ही सुहाना, पहाड़ों पर बादल टकराते हैं तो ऐसा लगता है कि हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं।
1: हम भी चले गए दूसरी दुनिया में।
0: झील है, नदियां है, झरने हैं, पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर माता रानी के शक्तिपीठ है और पहाड़ों की गोद में शिव जी के मंदिर है, तो बड़ा ही सुंदर नजारा होता है।
1: अभी सावन में ज्यादा भीड़भाड़ होगा शिव के मंदिर में?
0: हाँ भीड़भाड़ तो बहुत ही रहती है, संडे को
1: जी
0: पूरा शहर उमड़ जाता है
1: अच्छा
0: पिकनिक मनाने के लिए।
1: क्या बात है,
0: सावन के जो सोमवार होते हैं उस दिन तो विशेष पूजा अर्चना होती है भगवान शिव के मंदिरों में और लोग बाग बाहर भी जाते हैं।
1: बहुत अच्छा,
0: पिकनिक के लिए हमारे यहाँ तो स्पेशल डिशे भी बनती है, दाल बाटी चूरमा लड्डू।
1: मुंह में पानी आ गया दाल बाटी चूरमा के नाम सुन के।
0: कुत्ते के पकौड़े, चिवड़े और खीर पूड़ी, मालपुआ, रबड़ी पूड़ी, इतनी सारी डिशे बना

0: करते हैं कि बस मजा आ जाता है।
1: क्या बात है।
0: जी, आपके उड़ीसा में भी तो
1: हाँ होता है,
0: मौसम सुहाना है अभी।
1: जी जी जी, चारों ओर मौसम सुहाना है। बोलिए, सुहाना मौसम में क्या गाना सुनेंगे उदय लाल जी?
0: अनजाना भी गीत सुनेंगे, वो रिमझिम के सावन, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है पूरे बोल।
1: ठीक है, हम याद दिला देते हैं।
0: आप याद दिलाओ।
2: रिमझिम।

0: हेलो मोपसंद
1: जी बहन, प्रणाम।
0: हाँ प्रणाम
1: जी, मैं राजू यादव बुंदेलखंड ग्राम उपरेखा श्रीरामपुर डेरा सरीला रा।
0: अच्छा
1: नहीं, हवा बहुत तेज चल रही है।
0: अच्छा बारिश नहीं हो रही है बुंदेलखंड में?
1: होगी लेकिन इस समय नहीं हो रही।
0: क्या हाल है, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं इस प्रोग्राम में?
1: हाल तो बहना जी बढ़िया है, मस्त है, बेस्ट है, स्वस्थ है, बिंदास है, और सावन का महीना आ रहा है तो और भी खुशियाँ लेकर आ गई।
0: अच्छा त्योहार के लिए खुशियाँ लग रहा है ना, और क्या क्या करते हैं सावन में?
1: सावन में बस झूला झूलते हैं और जलेबी और रसगुल्ले खाते हैं।
0: अच्छा ठीक है, गाना कौन सा सुनेंगे बोलिए?
1: गाना उसका सुनेंगे, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर लौट के।

0: उपरे
1: शक्ति जहाँ वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही था चेटिनार सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष दृढ़ मूल दुआ चेटिनार सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: ओडिशा सरकारंक समवाय विभाग तरफरु राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानकु सूचित कराउछि जे चलित 2026 मसिया खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चीनाबादाम हलदी ओ हरड़ चाषर बीमा पंजीकरण कराइ नियंतु। भाग चाषी ऋणी ओ अणऋणी चाषी समस्ते निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुधा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैंप्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चासी पिछा 5 एकर जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका दबाकु पड़िबो। अधिक विवरणी पाई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।
3: बंधु आपण माने अछंती आकाशवाणी लाइव परिसररे। आज आमे बंधुता विषय कथा होचे। हाँ, बंधुतारे स्वार्थ न थाए, रही थाए निस्वार्थ भल पाइबा, विश्वास, अनाबिल प्रेम, स्नेह। कहा जाए कठिन समय रे जे पाखरे छेड़ा ही थाए, जीवनर आरंभरु मशाणीर भूई पर्यंत जे सांगरे थाए से हेउचि बंधु। तेणु सेथिपाई बंधु आम पाई एक स्वतंत्र संपर्क, आम जीवनर एक आमे कही पारिबा गोटे एमिती अंग, जो अंग आम पाखरु केबे दूरे जीव नाही। बंधु ही जीवनर प्रकृत दर्पण बंधु, जे केवल प्रशंसा करे नाही, बरम भूल थिले ताकु वास्तवतार आईना देखाई ठीक मार्गरे चालिबाकु प्रेरणा देइथाय। बंधुतार भाव ही मनुष्य को ईश्वरंक सहित जोड़ी थाए। सेइति पई त भक्त कवि मधुसूदन राव कहिछंती, काही बंधुता काही प्रेम सुंदर, जार प्राप्ति जोगु देवता नर, सूर्य बिना पृथ्वी जेपरी आलोकहीन होई पड़े, ठीक सेहिपरी बंधुहीन जीवन निसंग दुखदायक एवं भारक्रांत होई थाए।

0: ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେଲୁ ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ଗୀତ। ଆଜି ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ମିଡିୟମ ୱେଭ୍ରେ 204.5 ମିଟର ତଥା 1467 କିଲୋହର୍ଜ ଯୋଗେ। ଏଫ୍ଏମ୍ରେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି 103.6 ମେଗାହର୍ଜ ଯୋଗେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଜି ରାତି 7:30 ଶୁଣିପାରିବେ କୃଷି ଓ କୃଷକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ଶୁଣିବେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
1: कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए

0: ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अन्य 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों में फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदियों के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के चलते मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह भी दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरैस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री की आलोचना की। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को दोषी ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जल उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ରିଲେ କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରରୁ ଭକ୍ତିଗୀତ।

0: पेइंग गेस्ट। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर, सॉरी क्षमा कीजिए, आशा भोसले की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं परिवार फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की, शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी का संगीत।
1: तत् आ थे थे तत् मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर नीरत करत उत हिरत।

लहर लहर लोडनिया लहकी मृदंग धनका झट झट झट झट नागिन थे थे सगन नदा दा किट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झट झ

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं पहली बार खतों को लेकर बैठी हूं यहां पर आप लोगों से जुड़ने के लिए, आपके नामों के द्वारा, आपके खतों के द्वारा। तो कार्यक्रम का आगाज करेंगे, पहले सुनिए ये छोटा सा संदेश।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें।
1: और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

फिर नियम और शर्तें तो आपने सुन ही ली, तो आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। आज आपको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए पहले देखते हैं किसका खत शामिल किया जा रहा है। ये जो लिखा है खत हमें, ये लिखा है जालंधर पंजाब से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। तो आपको सुनवा रहे हैं इनकी पसंद पर डोली फिल्म का गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। और इसी गीत को ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सुनना चाहा है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया ने। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं रजिंदर कृष्ण का लिखा ये गीत।

ये पहला गीत था आप लोगों की फरमाइश पर। चलिए देखते हैं अगली फरमाइश किस गीत के लिए आई है। इस गीत को जिन्होंने पसंद किया है उनके नाम है शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि पाटिल, सृष्टि पाटिल और समस्त परिवार, शिंदे चौक दक्षिण कस्बा सोलापुर महाराष्ट्र से इन्होंने फरमाइश की है। साथ ही इस गीत को सुनना पसंद किया है गांव कोटड़ा बहादुर से यानी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान दांगी, मिस्टीना दांगी और लक्ष्य बाबू ने। ये गीत है फिल्म यारा दिलदारा से। उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दर्द फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। नक्श लायल पुरी ने इसे लिखा है, खयाम का संगीत। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी और मिसेस कीर्ति सोलंकी ने। इस गीत को सुनना पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

और लीजिए अब आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आवारा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन का संगीत है। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है अब्दुल फादर खत्री, शिरीन बानो खत्री, अब्दुल अजीज खत्री और अफीयत खत्री ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। तो चलिए इन सभी की फरमाइश पर सुना जाए ये गीत।

अपना देश इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस गाने की फरमाइश हमें तेलंगाना से भेजी मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा अजमीन गुड़िया ने। और इस गीत को सुनना पसंद किया जोधपुर से जबर सिंह फूलवाले, रुद्राक्ष मानू, दिनेश सोढ़ा, देवेंद्र सिंह फूलवाले ने। और आज का ये जो हमारा

0: सफर था मन चाहे गीत का, ये अब यहीं पर संपन्न होता है। आपके खतों का इंतजार हमें जरूर रहेगा, तो अपने खत भेजते रहिए और हमसे जुड़े रहिए इन खतों के जरिए। और आज ये कार्यक्रम मैंने पहली बार पेश किया है, तो यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। दिल में कोई बात ना रखें, अपनों से हमेशा अपने दिल की बातें साझा करते रहें तो दिल हल्का रहेगा। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से। नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।
1: मन चाहेगी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने नाटक तोहफा। दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन अंग्रेजी हुकूमत के कैदखाने में बिताए थे। मुगलिया सल्तनत के इस आखिरी चराग को उसके अपने घर की हवाओं ने गुल किया, लेकिन अंग्रेजी कमांडर ने जो तोहफा दिया वो बादशाह तो क्या, पत्थर का कलेजा हिलाने के भी काबिल था। आइए इसी वाकये पर आधारित ये ड्रामा सुनिए, तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर, रूपांतर जोहरा मिर्जा और निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए नाटक तोहफा।

0: দাদা জান কি জান? আও বলো বেটে রোকসানা,
1: अब आप ही फैसला फरमाएं।
0: किस बात का फैसला बेटे?
1: हम दादी जान से बार बार कहते हैं
0: क्या
1: कि हमें चांदनी चौक हवाखोरी के लिए भेजे, मगर वो सुनती ही नहीं है।
0: अभी तो शब है बेटे, और रात के वक्त सैर को नहीं जाया करते।
1: लीजिए दादी जान भी आ गई।
2: मेरे सरताज, इसे किसी तरह से समझाइए।
0: कह तो रहा हूँ मेरे बेटे, हम सुबह सैर करने चलेंगे और फिर
1: आगे फरमाइए ना, खामोश क्यों हो गए आप?
0: हम क्या कह रहे थे?
1: हम जानते थे यही होगा, आप बहुत सी बातें भूल जाते हैं। दादा जान, क्या रात भर हम यही रहेंगे?
0: हाँ बेटे, हम यही रहेंगे।
1: हमारी सारी कनीसें कहाँ गई?
0: अपने अपने घर।
1: मगर क्यों?
0: अल्लाह का ऐसा ही हुक्म है बेटे।
1: अल्लाह ऐसा हुक्म क्यों देते हैं? हमें यहाँ गर्मी लगती है, कोई हमें पंखा झलने वाला भी नहीं है।
0: कोई बात नहीं, आपकी दादी जान आपको पंखा झल देंगी।
1: हमें कपड़े कौन पहनाएगा?
0: दादी जान।
1: खाना कौन खिलाएगा?
0: दादी जान।
1: दादा जान।
0: हाँ।
1: दादी जान, क्या कोई फरिश्ता है जो सारे के सारे काम अंजाम फरमाएंगे?
0: चलो थोड़े बहुत आपके काम हम भी कर देंगे बेटे।
1: आप? दादा जान।
0: हाँ।
1: आप?
0: क्यों, हम नहीं कर सकते क्या?
1: दादा जान।
0: हाँ।
1: आपको तो हुक्के के लिए, खासदान के लिए, उगालदान के लिए, पापोश पिन्हाने के लिए अलग अलग खादिम चाहिए, और आप?
0: बेटे रुखसाना, ये वक्त बड़ी जालिम शय होता है, ये किसी से कुछ भी करवा लेता है बेटा।
1: खैर दादा जान, इस सिलसिले को यही खत्म करें।
0: हाँ।
1: और फिलहाल हमें कोई किस्सा सुनाएं।
0: बहुत खूब बहुत खूब, हम आपको किस्सा सुनाते हैं। एक था बादशाह, घोड़े पे सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार। वो
1: जिधर से गुजरता था जलजला सा आ जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया। दादा जान, ये किस्सा इतनी बार आपने सुनाया है कि बिल्कुल हिज हो गया है। दादा जान, ये घिसे पिटे किस्से आप अपने पास ही रहने दें, मैं अम्मी जान के पास जा रही हूँ।
0: लेकिन

0: लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जलजला तो रुक गया लेकिन एक खौफनाक तूफान बपा हुआ, खतरनाक खूंखार तूफान। सियाह आंधियों के थपेड़ों ने सब कुछ तितर बितर कर दिया।
1: मेरे सरताज, किस्सा किसे सुना रहे हैं? रुखसाना तो कल के यहाँ से जा चुकी है।
0: रुखसाना चली गई? मलिका, आपकी आवाज इस कदर गमजदा क्यों हो रही है?
1: यूं महसूस होने लगा है जैसे कुदरत की सारी नियामतें वीरान हुई जा रही हूँ। चन्ना का पानी बदरंग और सियाह लगने लगा है।
0: मलिका ए आलिया, कभी जमुना के बारे में ऐसे अल्फाज भूल से भी अपने लब पे न लाएं। पानी तो दुनिया के हर दरिया में बहता है, लेकिन दरियाए गंगा और जमुना में आबे हयात बहता है। जमुना कभी भी बदरंग और बदमजा नहीं हो सकती।
1: संत तराशों के फन को शाही रुपये ताज खिलत से नवाजने वाले सल्तनत मुगलिया के चश्मो चराग शहीशाह शाहजहां ने इसी जमुना के रास्ते लाल किले में अपने कदम रंजा फरमाए थे।
0: हाँ मलिका आलिया, हम उन्हें शहंशाह शाहजहां के वारिस हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और हुनरमंदों को एक झांकर लाल किला तामीर करवाया और जमुना के रास्ते किले में तशरीफ लाए। और एक ये बदनसीब जफर रात के अंधेरे में उसी लाल किले को दुश्मनों के नरगे में उनके रहमो करम पे छोड़ के पीछे के दरवाजे से उसी जमुना के रास्ते से भागकर उस वीरान अंधेरे मकबरे में पनाह ले रहा है।
1: मेरे सरताज, ये मकबरा उन्हीं खुशबख्त शहंशाह हुमायूं का है जो अपने दुश्मनों से शिकस्त खाने के बाद दोबारा सल्तनत हासिल करके तख्त नशीन हुए थे।
0: हाँ मलिका आलिया, पत्थर की इन दीवारों से जब कभी हाथ मस हो जाता है तो सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूं महसूस होता है जैसे कोई बुजुर्ग पुष्ट थपथपा के कह रहा हो, हमने हिंदुस्तान में रहकर ऐसी ऐसी नायाब चीजें हासिल की जो शायद फरिश्तों को भी नहीं मयसर। उन्हीं में से बेश कीमत चीज है जज्बे हुब्बुल वतनी, मुल्क पर कुर्बान हो जाने का जुनून ही तो है कि आज भी हमारी झुकी कमर में फौलाद सी सख्ती और खुलती बंद होती आंखों में आफताब के शोले देखते रहते हैं।
1: मेरे सरताज, ऐसा लग रहा है जैसे अनजानी ताकत ने हमें अपने हाथों का खिलौना समझ लिया हो।
0: उम्र का लंबा हिस्सा हमने गुलाबों और इत्र अंबर की महक में डूबे भावों में गुजार दिया। ये तो पाक परवरदिगार का मौजिजा है कि इस ढलती उम्र में सल्तनत मुगलिया की शान और शौकत बरकरार रखते हुए अपनी मादरे वतन पर कुर्बान होने का मौका अता फरमा रहा है।
1: कोई आ रहा है?
0: आप पर्दे में हो जाएं।
2: आलीजा,
0: क्या खबर लाए बख्त खान?
2: आलीजा, सारी दिल्ली पर फिरंगियों ने कब्जा कर लिया है। लाल किला अंग्रेजी फौज की गिरफ्त में पहुंच चुका है आलीजा।
0: हमारी गलत आदतों का अंजाम यही होना था बख्त खान। अफसोस, हमारी आंखें कैसा मंजर देख रही हैं। हम शिकस्त खुर्दा लाचार फिरंगी के पास फतेह के अंबार।
2: आलीजा, हमारी ये भी बदनसीबी है कि ऐसे नाजुक वक्त पर भी हम मुगल, पठान, मराठा और राजपूतों में बट के रह गए।
0: हमने सुना था वक्त खान, बुरा वक्त और मुश्किलें इंसान को एक कर देती हैं, लेकिन नहीं, तकदीर में फिरंगियों के हाथों हमें तबाह ताराज होना ही लिखा है। हमें शिकस्त का ही मुंह देखना होगा शायद।
2: हरगिज नहीं आलीजा, हरगिज नहीं। इस सरजमीन को हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून से सींचा है। हम अपनी मादरे वतन को फिरंगियों की चारागाह बनने नहीं देंगे। जंगल बियाबानों पहाड़ों की गुफाओं में पनाह लेंगे और इन नाहंजारों के साथ जंग

0: बख्त खां, इस शाह की उम्र 80 बरस की होने को आई, शेर व शायरी लिखने वाले इन हाथों में कुव्वत कहां कि खौफनाक तूफान को रोक सकें। बस एक शाही मोहर, एक कोरा दस्तावेज है हम।
1: शाही मोहर की वक्त आज भी कम नहीं हुई है अलीजा। आप जहां कयाम फरमाएंगे हिंदुस्तान की बादशाहत वहीं रहेगी।
0: तारीख बताती है कि मुगलों ने हिंदुस्तान की सरजमीन को फतेह किया,

0: उस दिन अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध भूल गए, हिंदुस्तान की मिट्टी उनकी वालिदा बन गई।
1: बजा फरमा रहे अलीजा, इस मादर वतन की इज्जत को दिन दूनी रात चौगनी करने में कोई दकीका उठा नहीं रखा। ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें तामीर करवाई, शालीमार और निषाद बागात लगवाए, मंदिरों के घंटों और मस्जिदों की अजानों को एक जैसा एहतराम करने की कोशिशें की, गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद डाली।
0: और इसी तहजीब और तमद्दुन इत्तेहाद को तहस नहस कर देना चाहता है ये फिरंगी, हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना चाहता है ये फिरंगी। लेकिन जब तक एक भी हिंदुस्तानी जिंदा है, उसकी तलवार फिरंगी के खिलाफ उठी रहेगी।
1: आलिया, यहां से कूच की तैयारी हो चुकी है, आप मलका आलिया को मुत्तला फरमा दें, मैं पालकी दरवाजे पर लगवा कर अभी हाजिर खिदमत होता हूं।

0: कौन लौट आए बख्त खां?
1: जी नहीं, इलाही बख्श आलीजा की खिदमत में कोर्निश बजा लाता है।
0: अरे कहां की बादशाहत, कहां के आलीजा, मकबरे में पनाह लेने वाला आलीजा कैसे हो सकता है?
1: ऐसा ना फरमाए, सरकार तो आज भी हिंदुस्तान के शहंशाह हैं।
0: हाँ, एक ज़ईफ बेकसूर लाचार शिकस्त खुर्दा शाह जो अपनी इज्जा के महलों से रात की तारीकी में भाग निकला और अब जंगल बियाबानों में भटकने जा रहा है।
1: ये क्या फरमा रहे हैं मेरे सरकार?
0: हाँ इलाही बख्श, बख्त खान ने सारा बंदोबस्त कर लिया है, हम भेस बदल कर निकल रहे हैं। अब हमारा कयाम यहां मुनासिब नहीं। सुना है लाल किले पर फिरंगी कब्जा कर चुके हैं।
1: बजा फरमाया, मैं आपको तलाश करता हुआ कुछ अर्ज करने हाजिर हुआ हूं। आप हमारे शाह ही नहीं अजीज भी हैं और ये मेरा फर्ज है कि सही वक्त पर सही सलाह देना।
0: क्या सलाह देना चाहते हैं आप?
1: आप भागने के बजाय गोरों की फतह कबूल फरमाने।
0: इलाही बख्श, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं?
1: अच्छी तरह से आलीजा, चमकते सूरज को सूरज कहना गुनाह नहीं है। फिरंगी फतह याब हुए हैं और हमारे हिस्से में शिकस्त आई है, हमें कबूल कर लेना चाहिए।
0: आप चाहते हैं हिंदुस्तान के ताज तख्त को फिरंगियों के कदमों के सुपुर्द कर दूं?
1: फिरंगी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी अक्ल और शुजात से हिंदुस्तान का ताज तख्त हासिल कर लिया है। हमारी अक्लमंदी इसी में है कि गोरों की मातहती कबूल कर लें और ठाट से पेंशन लेकर चैन की जिंदगी गुजारें।
0: ऐ पाक परवरदिगार, तमाम आलम में अपना इकबाल बुलंद रखने वाला सल्तनत मुगलिया का शाह जफर फिरंगियों के दिए हुए रद्द मजालिम खैरात पर बाकी की उम्र गुजारेगा।
1: अस्ताखी माफ हो आलीजा, आप भाग कर जाएंगे भी किधर? मुल्क पर गोरों का कब्जा हो चुका है, अपने बेकसूर बच्चों और मलिकाए आलिया के बारे में तो तसव्वुर फरमाएं।
0: क्या फिरंगी हमें इज्जत बख्शेंगे?
2: आलीजा, क्या सुन रहे हैं मेरे कान? तशरीफ ले चले, सवारी तैयार है।
3: बख्त खां, आलीजा ने बियाबानों पहाड़ों में भटकने के बजाय फिरंगी की हुकूमत कबूल फरमाई है। इनकी जानो माल और इज्जत की जिम्मेदारी मैंने ली है।
2: मक्कार गद्दार फरेबी इलाही बख्श, तुम यहां तक गिरोगे मैंने सोचा भी ना था।
3: बख्त खां, जबान को लगाम दो,
2: तलवार म्यान में रहने दो, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है वरना इसके पानी से तारुफ करा देता। आलीजा, लम्हा भर भी यहां ठहरना हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
0: बख्त खां, हम बहुत थक गए हैं, टूट चुके हैं, हमारे अज्जा ने फिरंगी का लोहा मान लिया है। एक अकेला बख्त खां और ये जई

0: बादशाह जफर।
1: सरकार देर न फरमाए, तशरीफ ले चले।
2: बख्खा, बादशाह तनहा नहीं है, अहलो आयाल के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है।
1: मेरे सरकार, एक एक लम्हा कीमती है।
0: बख्खा, हमें मलिका आलिया और अपने फर्जंदगान से मशवरा कर लेने दो।
1: सरकार, क्या ये आखिरी फैसला है?
2: बख्त खान, तुम सिर्फ एक सिपहसालार हो, हदें तोड़ने की कोशिश ना करो।
1: आप खामोश हैं अलीजा। इलाही बख्श, तुम जीत गए। तारीख का मौर्ख लिखेगा सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार की हार फरेबी मक्का रिश्तेदार के हाथों हुई है। तो आस्तीन का सांप निकला, इलाही बख्श, थूकता हूं तुझ पर। मैं जमुना में नाव पर आलीजा आपकी राह देख रहा हूं।
0: अक्ल काम नहीं कर रही, लगता है रेतीले मैदान में हम खोए जा रहे हैं।
3: नहीं नहीं आलीजा, हम सही रास्ते पर हैं।
0: ये कैसा सूर है? ये कैसा शोर है इलाही बख्श?
2: वो आ गए।
0: तुम हंस रहे हो, कौन आ गए?
3: फिरंगी, मैं देखता हूं। मलिका आलिया,
4: मेरे सरताज,
0: हम आखिरी दाव हार गए, फिरंगी ने हमें घेर लिया है।
4: बख्श खान को बुलवाएं।
5: बट कैन बट कैन गुजरा वक्त हो गया, उसी वो अब नहीं आएगा। बादशाह की खिदमत में हटसन आया है।
0: मलिका, आप पर्दे में तशरीफ ले जाए। इलाही बख्श कहां है? उसने हमसे कहा था
5: वो हमारा खास आदमी, तुम्हारा एड्रेस पता वही दिया, तुमको भागने से उसी ने रोका।
0: मत कर इलाही बख्श,
5: सीखने से क्या फायदा, तुम हमारा कैदी प्रिजनर, इलाही बख्श पाएगा इनाम और तुमको मिलेगा सजा।
0: किस जुर्म की सजा मिलेगी हमें? इलाही बख्श ने तो कहा था
5: व्हाट डिड ही से,
0: अंग्रेज हमारी इज्जत करेगा।
5: इज्जत, मर्डर का इज्जत, तुमने, तुम्हारा फौज ने अंग्रेजों को मारा है।
0: हमने उन लुटेरों को मारा जो हमारा मुल्क लूटकर हमारी आजादी कुचल देना चाहते थे।
5: बागी का मिजाज अभी तक ठीक नहीं हुआ। डू यू नो बादशाह, तुम जानता है मौत का बदला मौत होता है। अंग्रेज सात समंदर पार करके हिंदुस्तान आया और तुमने उसको मारा। हम भी तुमको तुम्हारी कंट्री से, तुम्हारे वतन से दूर ले जाकर मारेगा।
0: हमें मौत से न डराओ फिरंगी, हम वतन परस्तों के लिए मौत एक महबूब होती है। दुआएं दो गद्दार इलाही बख्श को कि तुम मां बदौलत के रूबरू खड़े हो, वरना फिरंगी ने हमेशा कदमबोसी की है और तोहफों के साथ अर्जदास्त पेश की है।
5: आई नो हम हेटिकेट भूला नहीं, बादशाह से कैसे मिला जाता है, हम आज भी गिफ्ट तोहफे के साथ ही आया है। सोल्जर एल्बर्ट, बादशाह की खिदमत में तोहफा गिफ्ट पेश करो। बादशाह हम बाहर जाता है, तुम अपना बेगम के साथ तोहफा उब

0: तोहफा। अभी आपने ये नाटक सुना। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की थी और रूपांतर जोहरा मिर्जा का। नाटक निर्माण में सहायिका थी चित्रलेखा जैन। तकनीकी सहायता विनायक तडवलकर ने प्रदान की। निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम भूमिकाओं सहित इस प्रकार हैं: बेगम जीनत महल, बिरजिस दोस्त, रुखसाना शहनाज अख्तरी, इलाही बख्श कमल शर्मा, बख्त खां क्यू एन कश्मीरी, हडसन किशोर कपूर और बहादुर शाह जफर विनोद शर्मा। नाटक तोहफा विविध भारती के मुंबई स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं, रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: कनिष्ठा चटर्जी सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो कॉमिक क्रिएटर है।
5: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
5: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
5: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी।
1: 5 अगस्त

0: निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की दूसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा भाग।
1: ये तो स्पर्श की बातें हुई, हालांकि स्पर्श के बारे में इतनी सारी बातें हैं और वो आपने अपनी आत्मकथा में बहुत विस्तार से लिखी हैं, पर इंटरव्यू में हम चूंकि संक्षिप्त बात कर रहे हैं तो हमने स्पर्श की तमाम बातों को स्पर्श किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है एक छोटी सी चीज और करते हैं, फिर चश्मे बद्दूर की तरफ बढ़ते हैं।
2: ओके,
1: स्पर्श का स्मिता कनेक्शन, थोड़ी सी बुरी बात
2: फिर है। मायूस किस्सा है, बताती हूँ
1: जी,
2: बताती हूँ। ये जब मैं दिल्ली छोड़कर और अपनी नौकरी छोड़कर और अपनी क्या कहते हैं टेडी जिंदगी छोड़कर मैं एक स्ट्रगलर के रूप में बंबई में हाजिर हो गई फिल्म, क्योंकि फिल्म बनानी थी, अब नजरों के सामने वही था और फिल्म की राजधानी बंबई, तो बंबई आना लाजमी था, तो बंबई पहुंच गई और इत्तेफाकन मुझे बहुत अच्छा ये मिला, वहाँ दामू जवेरी नाम के बहुत बड़े गुजराती थिएटर के जाने माने वंडरफुल पर्सन, तो दामू भाई ने मुझे बिकट वाट वही वाट ये म्यूजिकल नाटक डायरेक्ट करने का ये सौंपा मुझ पर। हाँ, दैट वाज फिडलर ऑन द रूफ का वेंकटेश माडगुकर ने किया मराठी अनुवाद। तो एनीवे वो मैं कर रही थी, लेकिन उसके पहले बंबई पहुंचते ही अब नाटक तो करना ही था, नाटककार थे तो, और तब स्मिता मिल गई और ओमपुरी मिल गया।
1: वाह।
2: और ओमपुरी तो बहुत ही स्ट्रगलर था उन दिनों, मतलब कुछ भी ढेला भी उसने नहीं कुछ तब तक किया था, और स्मिता का नाम जरा जरा हो रहा था क्योंकि टेलीविजन में वो निवेदिका थी वगैरह वगैरह, और शायद शाम के साथ एक आध फिल्म शुरू हुई, लेकिन स्मिता का जरा सा नाम हो रहा था, ओमपुरी का नहीं था, मेरा भी नहीं था बंबई में। हम तीनों ने मिलकर सोचा कि कुछ थिएटर किया जाए, और मेरे पास महेश एलकुंचवार का बहुत बेहतरीन नाटक था वासना कांड, जो मैंने दिल्ली में खेला था, कुसुम हैदर ने रोल किया था उसमें, लाजवाब रोल किया था बहुत, और वो प्रोडक्शन भी खुद नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ हमारा, और लोग दंग रह गए, बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कि निस्तब्ध हो गए शो देखने के बाद, ऐसा सन्नाटा सा हुआ ऐसे, इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। तो एनीवे मैंने कहा कि मुंबई में ये करते हैं, और एनसीपीए के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में हमने ये नाटक किया। अब मेरे इतने साल हो गए इन तीनों चारों फील्ड्स में काम करते, टेलीविजन, स्टेज, थिएटर, फिल्म, रेडियो, लेकिन व्यवहार किस चीज सिखाते हैं ये अभी तक मुझे नहीं समझ में आया
1: जी।
2: इसको भी मैं मेरे नाना को और मेरी माँ को मैं दोष देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुझ पर इतना वो किया कि ये बहुत पैसे के बारे में सोचना बहुत बुरी बात है, तुम अपना काम करो, काम में आनंद लो, काम में मजा लो, लोगों को देखो, लोगों को समझो, लोगों से प्यार करो वगैरह, पैसा क्या चीज है। और कभी उन्होंने मेरी तनख्वाह कितनी है उनको नहीं मालूम था आखिर तक, कितना माँ ने पूछा ना नाना ने कभी भी पूछा कि कितने पैसे, मतलब पैसों की बात ही नहीं होती थी, और मैं अनाड़ी के अनाड़ी रह गई। तो मुझे लगता था काम चलाने लायक कुछ मिले तो ठीक है, गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस नाटक के लिए पैसा तो चाहिए ना स्टेज करने के लिए, तो वो कुछ ढेला भी नहीं था किसी के भी पास, ओम तो स्ट्रगलर, स्मिता बिचारी नई नई आई हुई, फिर हमने किसी तरह इधर उधर जुगाड़ करके पता नहीं कैसे किया, लेकिन वो नाटक हमने किया। और उस दरमियान मेरी स्मिता से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई, और उसकी एक वजह ये थी कि हम दोनों को बिल्लियां बेहद पसंद, स्मिता अपनी बिल्लियों के बारे में बताए, मैं अपनी बिल्लियों के बारे में, और ओम

0: सुनता रहे, तो हम बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। फिर मैंने स्मिता को बताया, और ये तो मेरे पास था ही, पटकथा इसकी थी। मैंने कहा स्मिता ऐसे ऐसे एक कहानी है मैंने लिखी हुई, एंड देयर इज अ लवली रोल फॉर यू, एंड आई वुड लव यू टू रीड दैट पटकथा। तो स्मिता ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, पढ़ूंगी ना। हाँ, और बात वहां तक रहेगी। फिर चार पांच दिन बाद मैंने फिर कहा स्मिता तुम पढ़ोगे ना? हाँ हाँ पढ़ूंगी। और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये आउट ऑफ पोलाइटनेस ये हाँ हाँ कर रही है, उसको कोई सचमुच की दिलचस्पी नहीं है इसमें। और वो बेचारी इतनी शरीफ है कि वो मुझे नहीं कहना चाहती कि तू क्या लिखेगी, मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारी कहानी वगैरह, तो ये तो कहेगी नहीं। और थी वो थोड़ी सी अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि शायद ये ऐसा तो नहीं समझ रही कि हमारी दोस्ती का मैं नाजायज फायदा उठा रही हूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती है मैं अपनी फिल्म के लिए उसको मैं गले में डाल रही हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिकॉज आई हैड माई ओन सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरल, मैंने कहा उसको ये नहीं लगना चाहिए, ये गलत होगा। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, लेट्स वेट, उसको अब पूछने दो, दो तीन बार तो मैंने जिक्र किया है, अब उसको पूछने दो कि सही अगर है कहाँ कमबख्त तेरी फिल्म पढ़ने तो दो। वो कुछ नहीं, एक नहीं दो नहीं, स्मिता से कुछ भी पूछताछ नहीं हुई। और फिर मैं मन में समझ गई कि इसको इंटरेस्ट नहीं है। और तब तक ये नसीर की बात हुई थी, शबाना की बात हुई थी, और शबाना को जब कहा तो शबाना ने ये चार फुट ऊंची छलांग लगाई, हाय मुझे एक जप्पी माई का सही फैंटास्टिक, ओ यस यस वाओ, मतलब बिल्कुल उल्टा, जो एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तो शबाना ने इतना मुझे, मतलब मैं तो आसमान में जाना बाकी था खुशी से, इतना शबाना ने उसमें खाया दिलचस्पी। तो फिर शबाना तय हो गई, और फिर धीरे धीरे इधर से सुनाई देने लगा कि स्मिता नाराज है। स्मिता ने कहा कि सही ने तो मुझसे बात की थी। मैंने कहा बात तो सच है, मैंने बात की थी, लेकिन उसने आगे नहीं ना बात कुछ की, तो मैं अकेली कब तक बात करती रही, लेकिन उससे मेरी बात नहीं हुई। फिर एक पार्टी में पूना में, वो मुझे अच्छी तरह याद, चाय पार्टी, और सुभाष औसत करके हमारे कॉमन दोस्त थे स्मिता के, मेरे जो चित्रकार हैं खुद, सुभाष के घर पार्टी थी तो स्मिता थी, इतने दोनों बात स्मिता। तो मैंने कहा चलो आज मैं बात करूंगी इससे, तो मैं पास गई, मैंने कहा स्मिता नाराज हो? तो उसने मुझे बड़ी ठंडी निगाह से देखा, उसने कहा हाँ, और पीठ फेरी, and that was it, that was the last conversation we had. फिर कभी हमारी ना मुलाकात हुई, ना बातचीत हुई, ना मैं उसे समझा पाई कि क्यों ऐसा मैंने नहीं पूछा। मेरी अपनी तरफ से कुछ, मैं अपनी ये करती ना तरफदारी, तो वो नहीं करने को मिली और वो चल बसी। और मुझे ये आज तक बहुत अफसोस होता है कि ये बड़ी ज्यादती हुई।
1: बिल्कुल, ये थोड़ी दुखद बात है। स्मिता की याद में एक गाना सुनते हैं, और एक ऐसी फिल्म का जिसमें स्मिता और शबाना दोनों साथ में थे।
0: अच्छा,
1: महेश भट्ट की फिल्म अर्थ।
0: हाँ हाँ, अरे वाह,
1: है ना।

0: नहीं कि एपिसोडिक मतलब क्या कहना चाहते थे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने मुझे देखा, बड़े प्यार से मेरे हाथ पकड़े और कहा, सही, तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया, क्या प्यारी फिल्म बनाई है, और क्या चाहिए। मतलब इतना बड़े दिल से मानना कि मैं गलत था, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, विच वॉज वंडरफुल। एनीवे, वो फिल्म और एक जन को अच्छी लगी और वो थे गुल आनंद।
1: क्या बात है,
0: गुल आनंद भी वहां थे और वो तो बिल्कुल, हम कहते थे ये रशियन फिल्म इंडस्ट्री के जामात है, क्योंकि वो बहुत फिल्में रशियन लेके उनको डब करके वो चलाते थे। ही वॉज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटर, बट ही हैड ट्राइड हिज हैंड एट वन फिल्म, खट्टा मीठा, विच वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल, और उनको फिर चस्का लग गया प्रोड्यूसर बनने का, और उनको ये स्पर्श बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे मिले, जो भी बातें करनी थी अच्छी फिल्में वगैरह, कहके उन्होंने कहा कि सही, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस विथ यू, कल सुबह मिलते हैं। मैंने कहा जरूर, और हम दोनों एक ही होटल में ठहरे थे, तो उन्होंने कहा ये होटल के सामने बहुत बढ़िया पार्क है, बड़ा विशाल पार्क, गोरकी पार्क, हाँ, तो हम पार्क पे मिलते हैं, वहाँ घूमेंगे, बात करेंगे। मैंने कहा चलेगा। तो हम सुबह सुबह मिल गए और चक्कर लगाते लगाते उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम वो फिल्म लिखो और तुम वो फिल्म डायरेक्ट भी करो। तो उन्होंने कहा, लेकिन वो फिल्म सीरियस नहीं होनी चाहिए, कॉमेडी बस, बिल्कुल 100% कॉमेडी चाहिए। ऐसी कोई कहानी है तुम्हारे पास? इत्तेफाकन मेरे पास थी ऐसी एक कहानी, बल्कि एक फिल्म बनाई हुई थी, टेलीफिल्म, कॉल्ड धुआं धुआं, जैसे कि आपने बताया। वो फिल्म थी तीन मुस्टंडे नौजवान कॉलेज स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं कॉलेज में, मस्ती मारते हैं, ये करते हैं, क्लासेस डुबो कर फिल्में देखते हैं, मटर गश्ती इधर उधर, लड़कियों का पीछा करना, सिगरेट पीना, और इसलिए धुआं धुआं कि वो हमेशा वो धुएं में क्या क्या देखते रहते थे, रंगीन सपने कि मैं फला करूंगा, मैं ढुमका करूंगा, ये वगैरह वगैरह।
1: ये कोई रियल लाइफ इंसिडेंट जैसा कुछ ऑब्जर्वेशन था?
0: ऐसे नहीं कह सकते, हो सकता है, पता नहीं क्या क्या देखते हैं, क्या क्या नहीं, या हो सकता है थोड़ी किसी हद तक, और फिर थोड़ा सा मैंने उसमें नमक मेरे डाला
1: जी।
0: अच्छा,
1: शानदार वाला।
0: तो ऐसे तीन दोस्त, और मैंने फिर गुल को ये कहानी सुनाई, कहा कि ये बहुत ही टेलीविजन में हिट हो गई थी, उसके 6-7 बार रीटेलीकास्ट हुआ वगैरह वगैरह लोगों की मांग पर। तो गुल ने कहा बहुत ही बढ़िया है ये कहानी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात है सही, अपन तो कमर्शियल फिल्म बनाने जा रहे हैं, अब ये तीनों को बेकार बकवास लोग मत दिखाओ, उसमें से एक जरा अच्छा होने दो, एक हीरो अपना, दो तो बेशक तुम्हारे मुस्टैंडे जो नालायक लोग को दिखाते हैं, लेकिन उनमें से एक जरा ढंग का आदमी जो सीरियस है, जो पढ़ता लिखता है, जो अच्छा है आदमी, हाँ, ऐसा दिखा सकते हो, तुम बदल सकते हो थोड़ा। मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने ही तो लिखा है, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, तो ये फिर तुम लिखो, कब, कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा एक महीना तो लग ही जाएगा इसे जरूर, तो अभी हम जा रहे हैं 3-4 दिन में वापस भारत, तो आज तारीख ये है, करेक्ट 1 महीने बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, तब तक तैयार होगी कहानी? मैंने कहा हाँ होनी चाहिए। तो हम लोग फिर एक दूसरे से विदा लेके निकल गए, भारत आके मैंने इधर उधर बताया। फिर मैंने सोचा कि ये फिल्म वाले तो होते ही बड़े लंबी बातें करने वाले, ये कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके कि तुम ये लिख लो, फला करो, मैं अब मेहनत करूं, लिखूं दोबारा, टाइम अपना बर्बाद करूं, और वो फोन तक नहीं करेंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, फिल्म वाले है आखिर। तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, और उसी तारीख को सुबह फोन, हेलो, मैं गुलानंद, बन गई, लिख ली मेरी आवाज? मैंने कहा नहीं अभी, क्या है गुल, थोड़ी सी बाकी है। लेकिन ऐसे करो, प्लीज मुझे एक हफ्ता और दे दो। दे दिया उन्होंने कहा। फोन जैसा मैंने रखा, अपना कलम उठाया, रिसीवर रखा, कलम उठाया, और वाकई में 4-5 दिन में फिर मैंने वो थोड़ा सा बदल रहा था, वो बदल दिया और वो कहानी दिखाई जो उनको बहुत पसंद आई, और फिर वो कुछ कुछ बताते गए, उसमें भी गुल का काफी ये था,
1: योगदान, कंट्रीब्यूशन,
0: एग्जैक्टली, योगदान बहुत था। कि उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, और वो लड़की वो भी नौजवान, हमको और भी तो चाहिए, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, उनके मौसी मौसा मौसी आए, मामा आए वगैरह वगैरह। मैंने कहा समझ रही हो, इसे इसकी कुछ बड़े बुजुर्ग कैरेक्टर भी तो आने चाहिए ना। फिर मैंने एक दादी माँ डाली, एक नानी, एक बाप डाला,
1: भाई डाला,
0: एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। तो ऐसे लोग डलते गए। फिर मैंने एक दिन गुल से कहा गुस्से से,

0: मुझे लगता है मैं बनिया बन गई हूँ और पुड़िया बांध के ये कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी कहानी बन गई। और स्पर्श के बाद तो ये अनुभव बहुत ही अनोखा था कि जो हम मांगे मतलब किसी हद तक तो वो एकदम पेश हो जाता था।
1: अच्छे प्रोड्यूसर की निशानी,
0: अच्छे प्रोड्यूसर, क्योंकि वो चाहता था अच्छी फिल्म बने। अब यहाँ ऐसे लगा कि नहीं, एक ही टीम में है हम लोग, और फिर फिल्म बन गई और बहुत अच्छे कलाकार मिले, फारूक और वहाँ भी गुल बहुत ही मतलब ही वॉज अ पक्का प्रोफेशनल, ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू सेव मनी, बट ही नेवर डिड द फिल्म और एनी वन एनी हार्म। फिल्म को मार के उसने नहीं कुछ कहा, उन्होंने एक्टर्स भी चुने। अब दीप्ति नई नई आ रही थी, बट ही सॉ कि यस, इस लड़की में बहुत टैलेंट है, हाँ उसको लिया। और नेचुरली एट दैट टाइम दीप्ति वॉज डाइंग टू मेक अ गुड फिल्म, हाँ सेम विथ फारूक, सेम विथ रवि ने तो कुछ भी नहीं किया था, मेरे कहने पर रवि को ले लिया, सिर्फ मेरे कहने पर। मैंने कहा नहीं नहीं इसको तो लेने, कुछ दो तीन लोगों के लिए मैं अड़ गई थी, एक वो रवि बासवानी था और दूसरी लीला मिश्रा थी। मैंने कहा ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, दादी अम्मा मुझे कोई, तुम चाहे जो भी कहे उनका तुम किराया दोगे। तो वह हंस के कहता है हाँ ओके बाबा, ले लिया उसको, क्योंकि बाकियों को तो रवि को बिचारी को 3,000 पूरी फिल्म का उसका मेहनत आना।
1: राकेश बेदी
0: वो नहीं मुझे मालूम, क्योंकि वो गुल ने लाया था राकेश को।
1: लेकिन उसने कहां से किस तरह कास्ट हुए थे?
0: फारूक ने गमन की थी ना
1: जी, गमन मुजफ्फर अली की,
0: मुजफ्फर की, और फिर देखा था उधर उधर, फारूक अच्छा एक्टर तो था ही, थिएटर करता था, तो गुल ने वो जरूर देखा होगा, जाके चुपचाप उनके प्लेस देखे हुए, इधर देखा होगा उधर, वो तो बहुत करता था। फिर वेन ही वॉज कन्विंस्ड की यस ही इज अ वेरी कल्चर्ड एंड अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो उनसे बात की और फारूक भी मान गए खुशी खुशी। और फारूक के साथ भी मेरी बड़ा अच्छा दोस्ताना हुआ, बहुत प्यारा आदमी था, बहुत ही नेक और प्यारा इंसान।
1: दो फिल्में और बहुत, वो अच्छा आगे बात करेंगे कि कैसे हाँ, कथा में हाँ, नसीर और फारूक आपसे लड़ाई करते थे कि कैसे रोल दिए, है ना, वो आगे बात करेंगे। गाना सुनते हैं।

0: सईद जाफरी का किरदार कहां से आया और ये पूरी फिल्म में आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण पक्ष बन गया।
1: हाँ हाँ, सईद का ना बहुत बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो था ही उस लायक ही, वाज अ ट्रेमेंडस एक्टर विद अ मेजर पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी, एंड ही वाज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज रोल।

0: इज मिशन, और वो भी अब गुल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सईद को पकड़ा कि वो वेस्ट एंड से लंदन में करते थे थिएटर और फिल्में बीबीसी के लिए इधर उधर, और वो अब चाहते थे यहाँ बॉलीवुड में आजमाना कि क्या कुछ बन सकता है क्या। वो देखने आए थे सईद, और गुल ने बराबर अपना जाल फांसा और सईद को पकड़ा लिया। और अब अच्छा प्रोड्यूसर तो था ही गुल, मतलब नाम उनका अच्छा था, तब तक स्पर्श के बदौलत मेरा भी थोड़ा सा नाम हुआ था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी इन द फिल्म। एंड तब तक वो एक कैरेक्टर बन गया था पान वाले का। तो उसने कहा फिर मुझे सईद ने, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? जैसे अरे वहां के पान वाले देखेंगे, हाँ पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं फिर मैं उनके साथ, और फिर हम दोनों दिन भर वो देखता रहे, हर ठेले में जाके उनके साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनकी बातें सुनना, उनके कुछ कुछ लफ्ज भी वो लिखते थे, पुरानी दिल्ली वाले जो जुबान थी ना दिल्ली की वो भी उन्होंने उठाई और कमाल का ये किया। और फिर अपने नाम पे वो बहुत ही वो थे स्ट्रिक्ट कि नाम अच्छा चाहिए मेरे रोल को। तो फिर हमने फुफन और याकूब और लच्छन और ये वो, हाँ कहते ना घंटी नहीं बजी, नहीं नहीं घंटी नहीं बजी। और फिर हमने कहा कि जाओ अब तुम अपने आप ही ढूंढ लो, अब हमारे नाम खत्म हो गए। तो एक दिन सुबह सुबह मुझे फोन आया, काफी सुबह की, मैंने कहा हेलो आदाब, मैं ललन मियां बोल रहा हूँ। तो वो नाम मिल गया। तो क्या रोल किया सईद ने, हाँ बहुत बहुत ही मजा आ गया। एंड द होल थिंग वाज वंडरफुल। लीला मिश्रा भी क्या कमाल की एक्ट्रेस है, वंडरफुल पर्सन।
1: सईद जी, जब चश्मे बदूर की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है पहले शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं। जितनी खूबसूरती से दिल्ली आपने दिखाया है और वो पूरा माहौल आपने जिंदा किया है, वो लोकेशंस कैसे ढूंढी थी और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बात?
0: ना क्या था यूनुस, वो तो सामने आ खड़ी होती थी।
1: अच्छा।
0: अरे हमें ये इधर नहीं देखा, हमको शूट करो, क्योंकि चाहे आम सड़क हो कोई दिल्ली की, या चाहे पुराना बाजार हो, पुरानी दिल्ली का कोई माहौल हो, या कोई खूबसूरत सा बाग हो, गार्डन हो, चाहे लोधी गार्डन हो, चाहे तालकटोरा गार्डन हो, चाहे जो भी, और इतने खूबसूरत सब नजारे होते थे कि क्या ले क्या नहीं, कैमरा पगला जाता था सबको। इसलिए वो कोई मुसीबत ही नहीं हुई। और एक तो खंडहर, दिल्ली के जो पुराने टूटे फूटे फोर्ट्स वगैरह, वो क्या मतलब बात, बहुत ही वो थी, दुकानें छोटी छोटी, और फिर बरसातियां, बरसाती भी अपने आप में बड़ी प्यारी चीज होती थी, है ना? तो वो भी हमें बहुत सुंदर बरसाती मिली, और घर भी इतने अच्छे मिले। फॉर दैट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू रवि बासवानी, क्योंकि रवि तो पक्का दिल्ली का बंदा था, दिल्ली में रहने वाला, और उसके पीआर बोलो तो इतना अफाट जाल था, विस्तृत जाल था उसके दोस्ताने का। तो एक से बढ़कर एक रवि ने लोकेशंस लाए। नसीर का घर जो था वो दैट वाज प्रोफेसर आर्याज लिटिल बंगलो विथ ब्यूटीफुल गार्डन ऑल अराउंड इट एंड अ वेरी क्यूट लिटिल हाउस इन बिटवीन, जो लगे बिल्कुल कि हाँ ये प्रोफेसर का घर होगा।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह से वो किचन
0: बड़ा टेस्टफुली किया हुआ। फिर शबाना का मतलब कविता का जो होता है फ्लैट बरसाती पे ऊपर, हाँ अगेन टेरेस है चारों ओर, उस पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए, उसका इकबाना उस पे लगाया हुआ, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा मिल गया, दोस्तों का था वो एक घर। और तीसरा रहा वो मंजुल जो कविता की दोस्त होती है, उनका घर एक शानदार है जो संकन लिविंग रूम है उसका। वो तो बहरहाल एक खुद आर्किटेक्ट थे, बड़े जाने माने मशहूर दिल्ली के, उनका अपना घर था जो उन्होंने हमें शूटिंग के लिए दे दिया। तो ऐसे एक एक एक एक होकर वो लोकेशंस बहुत सुंदर बने, और इसलिए दिल्ली जो दिखी चश्मे बदूर में वो निहायत खूबसूरत दिल्ली थी, बड़ा प्यारा हसीन सा शहर। किसी ने मुझे कहा कि तुमने तो ये एड फिल्म बनाई सही दिल्ली के लिए, मैंने कहा नहीं, ये मेरा लव लेटर था दिल्ली को।
1: क्या प्यारी बात है, वाह। एक चीज ये है कि जो कमर्शियल सिनेमा है उसके प्रति प्यार की एक निशानी चश्मे बदूर में आती है, और वो आती है जब वो ड्रीम सीक्वेंस जैसा है जहां पर एक के बाद एक गाने आते रहते हैं, जो आपने पूरा

0: पूरा पैरोडी बनाई,
1: मजाक उड़ाया था यार। रवि जो गाते हैं, रवि और दीप्ति मिलके
0: जी, वो कमाल है जिसमें एक के बाद एक गाने आते हैं, कभी परवीन बाबी का गाना आ जाता है तो कभी पुराने गाने चले आते हैं,
1: कभी जीरत अमान का आता है
0: जी
1: है?
0: जी
1: कभी देवानंद का, और वो
0: क्या कमाल, देवानंद वाला तो अद्भुत
1: किया भी उसने वो ढीली ढाली चाल उसकी
0: जी,
1: और कभी दिल चाहे या माथा यारा
0: मैंने तो हाँ कह दी,
1: वो भी दीप्ति और रवि ने गाया, जो वो बहुत मजे मजे
0: शीशा हो या दिल उसमें तो जो दीप्ति लगी है
1: वो बहुत अच्छा किया रहा उसने, बहुत सुंदर किया रीना रॉय का, बहुत खूबसूरत, तो वो करने में मजा भी बहुत आ गया बहुत
0: जी। ये फिल्मी गानों से आपका प्यार भी दिखाता है।
1: एक बात बताऊं, वो जो उसमें ये था ना आ जा
0: तीसरी मंजिल,
1: तीसरी मंजिल वाला गाना, तो वो दीप्ति से वो करवा रहे थे और दीप्ति ने थोड़ा सा इस सिलसिले में परेशान किया, अगर कहीं पूरे मेरे दीप्ति के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं उसमें अगर कहीं हमारी थोड़ी सी नोक झोंक हुई तो उसमें, वो चाहती नहीं थी वो गाना गाए और ये करे इस तरह कुछ वीक पहने वगैरह, पता नहीं क्या उसके बीच बीच में कभी भूत सवार होता था, कभी कम ही लेकिन कभी कभी होता था। तो फिर गुल ने तब के डांस मास्टर जो इंडस्ट्री के बड़े माने हुए विजय ऑस्कर करके दोनों थे, तो उसमें से ऑस्कर को रखा उन्होंने, और ऑस्कर का ये काम था कि दीप्ति से
0: डांस करवा ले,
1: डांस करवा तो वो एक सन इन सैन में कमरा बुक किया था गुल ने, और वहां हमारा दिन भर चलता था, तब VHS का जमाना था
0: जी।
1: तो VHS एक मंगवाया मशीन, और VHS कैसेट थी जिसमें ये तीसरी मंजिल वाला गाना बार बार हमने इतनी बार वो सुनाया आ जा। उसमें डांसर्स भी हैं, एक तो आशा पारिक नाचती है और उनके साथ एक फाइल होती है दाएं बाएं, हाँ आठ आठ लोगों के, आठ मर्द इधर आठ मर्द उधर, और नाचने वाले सब, तो वो हम बार बार देखते थे, और मैं ऑस्कर को बहुत बार समझाती थी क्या चाहिए, मुझे लगता है कि ये मेरी बुरी आदत है, हालांकि तब किसी दोस्त ने या कलाकार ने कभी नहीं मुझे कहा, लेकिन अब बच्चे कहते हैं मुझे कि तुम वही एक बात इतनी बार बताती हो कि आदमी तंग आ जाता है, ये मुझे अभी वो कहते हैं, तो उस हिसाब से मैं बार बार बेचारे ऑस्कर को बताती रही कि ऑस्कर ये ऐसा चाहिए, देखा ना ये कैसे ये आठ जने नाच रहे हैं, ये देखा ना ये, तो ऑस्कर ऐसा मुझे चाहिए वगैरह, और वो बड़ा प्यारा बड़ा पोलाइट आदमी, हाँ हाँ सही है सब कुछ सही, हाँ जी जी बिल्कुल ये से सही श्योर श्योर सही कहता रहे। फिर एक दिन मुझे लगता है ऑस्कर का भी दिल भरा है, उब गया वो भी उसने फिर वो रोका VHS मशीन, मैंने कहा सही ये आठ जनों की लाइन देख रहे हैं ना जो मर्द नाच रहे हैं दाएं तरफ, मैंने कहा हाँ, उसमें से तीसरा आदमी देखो पहचानती हो वो मैं हूँ मैंने कहा क्या, हाँ मेरे करियर की शुरुआत इस गाने से हुई है, और तुम क्या मुझे बार बार बता रही हो ये करो वो करो वो करो, मैं चुप, फिर मैंने कहा जो करो मैं नहीं कुछ कहने वाली, तो इतनी मजे की बात होती है।
0: वाह वाह वाह क्या बात है। इस फिल्म में मंगेश देसाई का एक बहुत बड़ा योगदान है, उसका जिक्र हम करना चाहेंगे।
1: ये जब फिल्म पूरी हो गई, और तब आपको तो मालूम है कि ट्रैक्स बनते हैं, आखिरकार जब बिल्कुल फिल्म बनने को आती है, मतलब जैसे ढक्कन उतारना होता है और भाप को निकलने देना होता है, तो ये सारे ट्रैक्स फिर एक ट्रैक पे जुड़े जाते हैं, तो हम राजकमल में पहुंचे, क्योंकि तब से जो बादशाह था रीमिक्सिंग का या साउंड री रिकॉर्डिंग का बादशाह था मंगेश देसाई
0: जी,
1: मतलब इतने वो मशहूर थे कि हर कोई हर जना चाहे कि मंगेश देसाई का सिक्का हमारे फिल्म पे लगना चाहिए री रिकॉर्डिंग, और यहाँ तक कि सत्यजीत रे भी कोलकाते से उनका टाइम लेते थे, उनका शेड्यूल देख के उनका टाइम बुक करके वो खुद अपनी फिल्में लेके पहुंच जाते थे बंबई राजकमल में, हाँ
0: जी जी।
1: इतना मंगेश जी का नाम था। तो अब स्पर्श में जाहिर है विद द काइंड ऑफ मनी दैट बासु वाज गिविंग अस एंड द काइंड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स वी वर डूइंग, तो ये सवाल ही नहीं था, हमारा ट्रैक इतना भद्दा था कि मैं क्या बताऊं, मतलब एक जगह तो अब कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन तब मैं कभी नहीं कहा ये किसी को नहीं बताया कि कहीं कहीं जगहों पर पायलट ट्रैक भी हमने इस्तेमाल किया है विच इज अनहर्ड ऑफ, ये कभी कोई नहीं करता, फिल्म वाला जो किसी नाम का फिल्म वाला हो वो कभी नहीं चाहेगा कि पायलट ट्रैक, मतलब भद्दा होता है वो, सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है और फिर वो डबिंग किया जाता है, लेकिन डबिंग के लिए पैसे ही नहीं थे, तो एक दो जगह बिल्कुल हमने कि अब क्या करें अब रहने दो पायलट ट्रैक नहीं पता चलेगा करके हमने दो तीन जगह स्पर्श में पायलट ट्रैक रखा। तो किसी ने कहा इनके पास जाओ मंगेश देसाई के पास, तो मैंने कहा पिटाई करवानी है, मंगेश देसाई तो उनका गुस्सा बहुत मशहूर था कि वो

0: पर भद्दा काम उनके पास ले जाओ ना, तो वो ऐसे रीलों के डब्बे फेंकते थे बाहर, ठक से एकदम पूरा रील का रील बाहर। तो शर्म नहीं आती, कैसे काम के लेके आए हो मेरे पास? मैंने कहा वो मंगेश जी रील तो नहीं, मुझे भी बाहर फेंक देंगे। तो मैंने कहा उनके पास मैं कैसे किस मुंह से जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो नहीं गए। फिर हमने जैसा तैसा गया, हमें भी बहुत अच्छे मिले। फिर बॉम्बे लैब में तब थे खन्ना साहब का, वेरी वेरी नाइस कॉलेज, तो उन्होंने काम किया। एनीवे फिर चश्मे बदूर तो गुल ने कहा कि जरूर मंगेश जी के पास जाना चाहिए। उन्होंने फिर डेट वेट पकड़ के हम लोग मिलने गए। तो मंगेश ने मुझे देखा, कहते फिल्म लेके आई है, पहली फिल्म लेके कैसे नहीं आई? तो फिर मैंने बिल्कुल कह दिया उनको साफ साफ। मैंने कहा मंगेश जी सुना है अच्छा काम नहीं हो तो आप बाहर रीले फेंकते। तो मैंने, हमारा इतना भद्दा था साउंड का सारा पूरा सिलसिला कि मैंने हिम्मत ही नहीं की आपके सामने आने की। अच्छा ठीक ठीक, चलो तो फिर बैठ जाओ, दोपहर से काम शुरू करते हैं। और फिर काम शुरू हो गया हमारा। और क्या बताऊं कि ऐसा मेल, जो मतलब शायद ही मेरा किसी के साथ इतना मेल हुआ हो किसी व्यक्ति के साथ, किसी कलाकार के साथ, कि मतलब इट वॉज फैंटास्टिक एब्सोल्युटली। एक बताती हूँ मैं बहुत प्यारा किस्सा। वो जो चश्मे बदूर जिन्होंने देखे है उनको वो मालूम है कि वो जो दो दोस्त होते हैं वो लड़की के मिलने के चक्कर में बाहर पड़ते हैं। बड़ी बातें तो करते हैं कि हम यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, और एक को तो बेचारे को वो समझती है कि ये प्लमर है और बेसिन दिखाती है बाथरूम वाली कि ये देखो चोक हो गई है, पानी नीचे नहीं जा रहा तो आप कुछ करो। और वो वहां से फिर भाग जाता है, बड़ा पानी पानी होकर शर्मिंदा होकर निकल जाता है। दिन भर फिर वो इधर उधर मटर गश्ती पार्क में दिन बताता है, क्योंकि ऐसा मुंह लेके घर कैसे जाएगा, घर मतलब कमरे में दो दोस्तों को मुंह कैसे दिखाएगा ना। तो वो फिर शाम को जाके फिर बड़ी गप्पे हाँकता है कि यहाँ क्या त्यों क्या। हाँ, और फिल्म में एक असली किस्सा है जो कि वो जाता है, वो कहती है अरे आइए आइए, कितनी देर आपका इंतजार कर रही थी। तो पहले तो खुश होता है कि हाँ मेरा इंतजार, कि ये देखो ना बाथरूम में कैसे पानी सब वगैरह वगैरह। और दूसरा जो किस्सा है, फिर ये बताता है कि अरे फिर हमने पार्क में गए और फिर वो एक बड़ा तालाब है, वो उसमें नैया एक थी और वो नैया में ये दोनों बैठ के टिपिकल फिल्मी गाना गाते हैं, इस नदी को मेरा आईना मान लो, इंदु ने बहुत सुंदर गाना लिखा। तो वो दोनों ये ड्यूएट गाते दो गाना, तो वो भी किया, मतलब वो जो उसकी फालतू की कहानी है मनगढ़ंत वो भी फिल्म आई थी। तो मंगेश जी ने कहा कि सही ऐसा करते हैं, वो दोनों बार बगीचे में तो जाके बैठता है, तो क्यों ना ऐसा करे कि पहली बार जब मतलब असलियत है, शर्मिंदा होता है बेचारा, तब हम बैकग्राउंड पे कौवा डालेंगे काँ, काँ, काँ। और दोबारा जब वो ये शोरो शायरी वाली और फला निमका ये बड़े प्यार मोहब्बत वाले किस्से सुनाता है, तब हम कोयल डालेंगे बैकग्राउंड पे। क्यों, कैसे रहा? मैंने कहा ओह गजब, मैंने कहा कैसे रहा, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मंगेश जी, क्या बात है। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। फिर काम हमारा चालू हो गया और वाकई में उन्होंने कौवे ढूंढे, फिर कोयल ढूंढी और वो साउंड ट्रैक पे आया, इतना मजे का लगा। और फिर करते करते जब हम सुन रहे थे, एकदम से उन्होंने रोक दिया रिकॉर्डिंग प्लेबैक। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहते हैं सही, हम दोनों इतने खुश हैं, लेकिन शायद किसी के समझ में भी आएगा कि नहीं, क्या पता क्या कि शायद ही किसी के, जो बहुत ही समझदार कलाकार किस्म का आदमी हो उसके समझ में आए, लेकिन आम आदमी के समझ में आएगा कि नहीं क्या पता। कोई बात नहीं, तुम और मैं हम तो खुश है ना। किसी को कहते हैं कला का आनंद, हमने तो यह आनंद खूब लिया, कोयल कौवा ये वो, बहुत खुश रहे हम, तो दिस इज इट वर्थ इट। तो यू नो इट वॉज ब्यूटिफुल लाइक दिस। और दूसरी एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि वो दोनों बंदे जो दोस्त उसके रवि एंड राकेश बेदी, वो ये करते हैं बेचारे हीरो को अपने फारूक को कि वो लड़की बेकार है और वो हमारे साथ भी घूमी है क्या वो क्या, उसको बहुत ही वो करते हैं। फिर वो इतना मायूस हो जाता है सिद्धार्थ कि वो फिर उसके साथ झगड़ा करके वो उनकी बातचीत बंद हो जाती है वगैरह वगैरह। और फिर ये दोनों, क्योंकि है तो बेचारे अच्छे, वो बुरे थोड़ी ना है, तो वो उनको फिर बहुत अफसोस होता है कि अपना दोस्त बेचारा किस कदर बुरी हालत में है। तो अब क्या करें, वो दोनों बहुत मायूस है और वो मद्रासी कैफे में है, डोसा वोसा इडली कुछ खा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं और रेडियो पे गाना चल रहा है। तो मंगेश जी ने कहा कि ये रेडियो पे गाना तो हम लगा रहे हैं उस सीन को, लेकिन इसमें अनाउंसमेंट भी होगी तो क्या मजा आएगा। वो ये होता है ना कि आपकी पसंद वाला
1: जी।
0: मैंने कहा हाँ वेरी गुड आइडिया, ये जरूर जरूर। कहते फिर तुम ऐसे करो कि अच्छी डबर को बुलाओ और उससे अपन
1: अनाउंसमेंट
0: अनाउंसमेंट करवा लेंगे। बोलो।

खास तरीका होता है उनका। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, मैंने रेडियो में काम किया है, मुझे मालूम है। वो ओके, फिर दोपहर के बाद करेंगे, लंच के बाद। फिर लंच हो गया, उन्होंने कहा अच्छा आई तुम्हारी डबर। मैंने कहा हाँ आई, कहाँ है? तो मैंने कहा नहीं वो मंगेशी, मैं खुद ही करके देखती हूँ। तो उनका चेहरा इतना सा हो गया और मैं साफ साफ पढ़ पाई कि ये डायरेक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्या है, वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी, ऐसा करें कि

0: एक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्या है, वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी, ऐसा करो कि आप देख लो, नहीं है तो बिल्कुल आप कह दो कि ये नहीं बात बनी नहीं, और फिर मैं कल सबसे पहले बुलाती हूँ, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी कि नहीं नहीं मुझे ये ले लो। अच्छा चलो, फिर बड़ा बेमन से फिर मुझे स्टूडियो में धकेला उन्होंने, फिर मैं हेडफोन लगाए क्या, और फिर मैंने वो पढ़ा और बड़े नटखट ढंग से पढ़ा, बल्कि बीच में गलत भी किया और माफ कीजिए वगैरह ये भी कह के आगे गई जी, जी। और फिर वो सारा जुमरी तलैया और ये सब डाला और पूरी तरह मतलब उस अंदाज से। अब वहां इतना टाइम जो गुजारा था आकाशवाणी में तो यू ही तो थोड़ी ना गुजारा था, तो वो मैंने सारा पूरा का फर्स्ट टेक ओके हो गया। और फिर वो भारी भक्कम दरवाजा खोल के मैं जैसे बाहर आई दरवाजे में, मंगेश जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहते हैं मोहतरमा तुम तो कमाल की चीज निकली, क्या बहुत खूब
1: तो, क्या बात है। लेकिन ये एक तरह से ट्रिब्यूट टू विविध भारती हो गया।
0: बिल्कुल, अब विविध भारती पे जो मुलाकात दे रही हूँ तो कुछ बात तो करनी चाहिए ना, जो वो अच्छी बातें याद है वो तो जरूर शेयर करनी चाहिए
1: जी,
0: है नहीं?
1: बिल्कुल। इस फिल्म का संगीत भी बहुत मायने रखता है।
0: हाँ, बहुत बहुत सुंदर है ना, बहुत संगीत और गीत भी। हाँ, गीत मतलब देखो, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि राइटर डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट, इनका अगर आपस में खूबसूरत मेल हो जाए तो क्या बात है। जैसे अब इंदु जी को मैंने कहा कि इंदु ऐसा है को वो बताती है कि मैं फला जगह संगीत क्लास के लिए जाती हूँ, और वो उसका बराबर जहन में उसको एब्सॉर्ब करता है और वो वहाँ पहुँच जाता है। और मैंने कहा वो अपने सुंदर मोटरसाइकिल है उसकी एक काली सी,
1: हाँ।
0: तो गाना कुछ ऐसा करो कि जो उसमें मजा आ जाए कि तो वो साथ जुड़ जाए। तो फिर काली घोड़ी द्वार खड़ी, और काली घोड़ी मतलब उसकी मोटरसाइकिल, और वो काली घोड़ी पे गोरा सैया चमके,
1: क्या शानदार लाइन है।
0: और वो इतना, और चकित भई सगरी नगरी, तो वो बस स्टॉप पे लोग सब ऐसे ऐसे देखते कि अरे ये कहाँ गई, अगर मतलब पूरा वो बैठ गया इतना। मतलब ये होता है जब मेल होना लिरिसिस्ट, फिर राजकमल का म्यूजिक, और फिर गाने वाले, और फिर मेरे एक्टर और मैं।
1: कवाल ये गाना सुनते
0: जी, क्या बात।

0: चकित भए तोगरे नगरे काले घोडे दौड पडे काले घोडे दौड पडे काले घोडे दौड पडे काले घोडे दौड पडे।
1: इस जैसा गाना जो पटकथा के अंदर इतना ज्यादा एम्बेड हो गया, ये जो बात आपने बताई कि मोटरसाइकिल और वो और इंदु जी ने जिस तरह से उस कहानी में उस गाने को पिर गया, एक कालजयी गाना बन गया। राजकमल जी को भी बड़ा श्रेय जाता है इतने बढ़िया गाने बनाने का।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: राजकमल जी ने अपना श्रेष्ठ काम किया इस फिल्म में
2: मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, इसमें कोई शक नहीं। और वो भी कितना अच्छा और कितना नेक गाना है, कहां से आए बदरा, इतना दुख भरा, इतना ये। और वो तो टीचर तो गाए चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या लेना देना, लेकिन ये रो पड़ती है गाते गाते
1: जी, आंसू बह रहे हैं उसके, पूरा एक माहौल आप बनाते हैं उसमें।
2: और उसके भी अंतरे जो है म्यूजिकल बीच के है प्रीलूड्स, उसमें फिर इसको दिखाया है कि ये भी उदास बेचारा दीवाना जैसे घूम रहा है सिद्धार्थ, तो वो गाने का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो गया। आई लव यूजिंग सॉन्ग्स टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड।
1: बिल्कुल, ये तो कथा में भी आता है, उसकी बात आगे करेंगे। बल्कि एक बहुत ही तेज तर्रार गाना इस फिल्म में था और वो था प्यार लगावत। वो तो एकदम अलग शैली का गाना है।
2: वो भी अगेन वही बात है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर इनका आपस में मेल हो और समझौता हो और एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करे दोनों, तो क्या होता है ये गाना साबित करता है। क्योंकि मैंने फिर ये कहा राजकमल को कि ये तीनों जने गाना गाते हैं मोटरसाइकिल पे घूमते, हाँ तीनों मुस्टंडे, तीनों अवलिया हैं, अपने अपने अलग ढंग के आदमी। मैंने कहा वो क्यों एक जैसा ही गाएं?
1: बिल्कुल,
2: हाँ वो अपना अपना गाने दो ना उनको। तो राजकमल ने कहा मतलब क्या? मतलब मैंने कहा ये कुछ और गा रहा है, वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ, मतलब उनका सुर भी और होगा, उनके लफ्ज भी और होंगे। कहते नहीं नहीं ये तो बड़ा झमेला नहीं हो जाएगा? मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं। और कोशिश की उन्होंने और क्या कमाल की। वो जो है ना प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत, वो तीनों अलग अलग अपना गाते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
2: और इतना वो मजे का लगता है। दैट्स व्हाई वो जो आज भी लोग कहते हैं कि वो फिल्म आज भी फ्रेश है, ताजगी है उसमें, ये ऐसे गानों की वजह से तो है।
1: बिल्कुल, तो ये गाना इस इंटरव्यू में प्यार
2: लगावट भी सुनोगे।

0: मैं एक चीज पर और ध्यान खींचना चाहता हूं और वो है ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ चश्मे बद्दूर। जिस तरह से फिल्म ओपन होती है वो बड़ा शानदार बना है।
1: नामावली,
0: जी नामावली, जिसमें वो एनिमेशन वगैरह है।
1: जी वो उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप राम मोहन को दे दो। राम मोहन एंड ही डिड कथा एंड ही डिड चश्मे बद्दूर दोनों।
0: हाँ, और कथा में वो चूहा बिल्ली,
1: हाँ यस टाइगर और ये वो। और कथा में भी तो जैसा हमारा निर्माता का जब आता है तो सुरेश जिंदल को आपने देखा है कभी? ये बाल उनके बिल्कुल लगे जैसा लायन है सींग। तो वैसा उन्होंने सींग बनाया उसके लिए, तो वो बिल्कुल लगे ये बराबर सुरेश जिंदल है। और डायरेक्टर के लिए उन्होंने बिल्ली मतलब मैं और वो नाखून ऐसे करके जाती है, तो मतलब इतना। और दीप्ति के लिए खूबसूरत सी गिलहरी और कान में उसके वो फूल दसवंदी का फूल। और विनी के लिए, विनी का इंट्रोडक्शन था फिल्म में, तो एक अंडा ऐसा फूटता है और अंदर से छोटा सा चूजा बाहर निकलता है, चू चू चू चू चू चू। नया परिचय विनी परंस पे। और सैनी हमारा गुस्से वाला कैमरामैन, वो टाइगर आता है शेर करके कैमरा लेके, ऐसे बहुत बहुत मजे के ये। और बीच बीच में जाहिर है कि कछुआ और खरगोश, इनकी रेस तो फिर चलती रहती है।
0: बिल्कुल, तो उसमें सारे अलग अलग
1: क्या। और चश्मे बद्दूर में तो और भी कमाल किया कि उन्होंने एक्चुअल फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए, गांधी जी, बर्ट्रेंड रसेल वगैरह ऐसे लोग लेके, मतलब एक तरह की ये हिमाकत ही हुई ना। ऐसे लोगों को लेके उन्होंने इतना खुश मिजाज बनाया पूरा टाइटल किस्सा कि क्या बताओ।
0: उसमें फिर आपका हाथ आता है जिसमें नेल पॉलिश लगी है लाल रंग की।
1: बिल्कुल।
0: तो सुंदर है, लेखक निर्देशक है ना, इस तरह से पूरा फिर आपका नाम आता है। सुंदर, मतलब वो ओपनिंग भी कमाल की थी। वीरेंद्र सैनी का जिक्र हमेशा बहुत जगह आया बातचीत में और वो आपके तकरीबन स्थायी कैमरामैन रहे।
1: उन्होंने स्पर्श और चश्मे बद्दूर और कथा सैनी ने की, फिर दिशा के साथ वो नहीं आए। बट सैनी अच्छे कैमरामैन भी थे, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, एंड ही वाज वन पर्सन हु वुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कभी भी उन्होंने मुझे अच्छा लगे इसलिए कुछ नहीं कहा।
0: कोई टकराव होता था?
1: बहुत बार। बहुत बार, दिन में एक दो बार तो जरूर होता था। लेकिन बहुत सही आदमी था, बहुत काम से लगाव वाला आदमी था और बहुत मतलब अच्छे दिन गुजारे हमने, बहुत आर्टिस्टिक ढंग के काम किए और बहुत अच्छा रहा वो सब पूरा माहौल। और उसमें सैनी का बहुत हाथ था।
0: जी जी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की यह श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।

0: ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ରକ୍ତହୀନତା ରହୁଛି ଏଥିରେ ଏଥିରେ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ରକ୍ତଟା ତାକୁ ସିକ୍ଲିଂ ସେପ୍ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଫ୍ଲୋଟା କମିଯାଏ ବା ଆମର ଯୋଉ ରକ୍ତ ଯେମିତି କମିଯାଏ, ହେଲା କି? ତ ଆର ସଫଳ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲେଭେଲରେ ଆମର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇଏରେ ଆମର ଆପଣ ଟାବଲେଟ୍ ପାଇଯିବେ, ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିଡ଼ା ଟାବଲେଟ୍, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତା ସହିତ ଖାଲି ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ହେବନି, ଆପଣ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ମାନେ ଧ୍ୟାନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ମନ୍ଥ ବା ତିନି ଚାରି ମାସ ଥରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇଏରେ ଯାଇକି ଚେକଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ହୁଏ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ, ଏଇଟା ତେଣୁ ଜନ୍ମଗତ ମାନେ କ'ଣ ବାପା ମାଆକୁ ଥିବ ମାନେ ଛୁଆକୁ ହେବ। ତ ତେଣୁ ଜଷ୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା କି ମାନେ ଜେନେଟିକ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିକି ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା କରିବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ୱାଇଜ୍। ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜେନେଟିକ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିଦେଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଛୁଆଟା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଜେନେଟିକ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ କ'ଣ କି, ସପୋଜ୍ ଏବେ ଜଣଙ୍କୁ ହେଇଯାଇଛି, ସପୋଜ୍ ସେ କ'ଣ ବାହାହବନି, ବାହା ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଆଉ ଜଣେ ପାର୍ଟନର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଜିନ୍ରେ ଯେମିତି ତାର କିଛି ନଥିବ ବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସରି ସିକ୍ଲିଂର କିଛି ଜିନ୍ଟା ନଥିବ, ହେଲେ କ'ଣ ହବ କି ଯୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହବ ସେ କେରିୟର ହବ, କେରିୟର ହେଲେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ଜେନେରାଲି।
1: ବଢିଆ କଥା। ଆଲେ ଦିଦି, ମିଳିଲା କି ତମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର? ତମକେ ମିଶା ଜବର ଜବର ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମିତି ସେ ଫୋନ କରତେ ରୁହା, ଏମିତି ସେ ମତାମତ ନେଇତେ ରୁହା, ଜୁହାର ଲାଗ ରେଲୁନି। ଆଲେ ବାବୁ, ଏବେ ଜନ କଥା କହିଦେଲା ସିନି କି ସୁସ୍ଥ ଛୁଆ କେମିତି ଜନ୍ମବାର ଆଧାର ରହିଗଲା ସେ କଥା, ସେଟା କାହାର ଟିକେ କହିଦିଆସ ଆର କେମିତି କଲେ କେମିତି।
2: ଜେନେଟିକ୍
0: କାଉନ୍ସିଲ୍, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜେନେଟିକ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ମାନେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଆମର ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡାଉଟ୍ କିଛି ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଇଡେନ୍ସ କରିବେ। ଗାଇଡେନ୍ସ କରିବେ, ଯୋଉ କହିଲି ଟେଷ୍ଟ କଥା କହିଲି, ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ପାଠରୁ ବସେଇବେ, ସେମାନେ ଭିତରେ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିବେ, ଯଦି ରାଜି ଅଛି ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ବୁଝେଇବେ ଯେ ଆମର ଫର୍ଦର କ'ଣ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆମର ଆମେ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ମେଣ୍ଡେଲିଆନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଯୋଉ କହିବେ, ସେଇ ମେଣ୍ଡେଲିଆନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଏଥିରେ କାମ ଦିଏ, କାହିଁକି ଜିନ୍ ଲେଭେଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନ୍କୁ ଆଉ ଜିନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛି, ମେଣ୍ଡେଲିଆନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ଟା ଏଥିରେ ଆମର କାମ ଦିଏ। ତ ତେଣୁକରି ଆମର ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଯୋଉ ଜେନେଟିକ୍ କାଉନ୍ସେଲିଂରେ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣ ପାର୍ଟନରଟା ତାର ଜିନ୍ ଲେଭେଲରେ ଯେମିତି ଆମର ସିକ୍ଲିଂର କିଛି ନଥିବ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
1: ବଢିଆ କଥା, ନେଇକି ଆମର ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକରି ଜବର ସାରଦା ଲାଗଲା। ଆରି ବୈଠକ ଲାଗେ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ହେଇକରି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବାହାର କରିକରି, ଆରି ଆର ଗୋଟେ କଥା ଜାଣୁଛ କି ନାଇଁ ବାବୁର କଥା, ଏ ବାବୁ ପିନି ବେଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଏବାର୍ଡ ପାଇଲା ଫାଚି ପିନି, ସେଟା ଆରି ପରବ ଲଗେ ପିନି,
2: କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଥିଲା।
1: ବଢିଆ କଥା, ଏଇ ଡାକ୍ତର ବାବୁକେ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର ଲାଗ, ଆମକେ ସମୟ ଦେଲା
0: ପଛେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ, ବଡ ମାନେ ଆଗକୁ ଭଲ କାମ କରିପାରିବା।
1: ରେସି ରେସି, ଆରି ମୁଇଁ କାଇଟା କହିଲି ବୋଲେ ଆମର ଜନ ବାବୁ ବୈଠକ ଲଗେ ଆସିକରି ଏତେ ଜ୍ଞାନ କଥା ମାନେ କହିଲା, ଆରି ସଚେତନ କରାଇଲେ କଥା ମନକେ, ହଁ ଏମିତି ସେ ବୈଠକ ଲଗେ ଡାକୁ ଆରି ଏମିତି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରତେ ରହୁ, ହେଲେ ଏବର ତ ସମୟ ହେଲାନି, ଏବେ ବେଲ ମିଶା ହେଲାନି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ସେ ରଖୁ, ଆରି ଜୁହାର ଲାଗୁ ରେଲୁନି ବାଇ ବୋଲି ମନ
2: ଜୁହାର ଲାଗୁ
1: ଜୁହାର ଜୁହାର।
3: ପ୍ରଚାର କଲୁ ଦେଶୀୟ ଭାଷାର ଲାଇଭ୍ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେଡିଓ କେ ପାଚାରୁ। ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷୀ ଆଚାରୀ ଏବଂ ରାଜୁ ପ୍ରଧାନୀ, ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ।
4: ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ସର ଫିରୋଜି। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
5: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
4: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
5: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
4: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले ना छिपाएं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। इस सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद ये फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने कहा कि संभावित समझौते में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। केरलम में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राज्य भर में कल से अब तक वर्षा संबंधित घटनाओं में 8 लोगों की मौत हुई है। 5,700 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई हैं। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह घुटने की चोट से पूरी तरह उबर ना पाने के कारण श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला से बाहर रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: नाम होचे गौतम सबक, ग्राम हतापुर, पंचायत रणशाली, ब्लॉक पुरस्तंबुर, जिला गंजा। मु प्रधानमंत्री फसल बीमा करिथिबा जोगु आर्थिक 85,000 टंका सहायता पाइली। प्रत्येक चाषी भाई भौणीनकु अनुरोध, समस्ते प्रधानमंत्री फसल बीमा करन।
2: फसल बीमा पाई शीघ्र पंजीकरण करंतु।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जनसेवा केंद्र CSC को जोगाजोग करंतु।
2: फसल बीमा संबंधी सूचना पाई हेल्पलाइन नंबर 1444 को कॉल करंतु।

0: और ड्रग्स के खतरों को समझे।
1: प्रधानमंत्री कहिछंती निशा लोकंकु सेमानक लक्ष्य थारु दूरै देथाय एहा केवल गोटिए परिवार को नष्ट करे नहि बरंग देशर शक्ति को मध्य दुर्बल करदिए। 100 सप्ताह व्यापी एहि जन भागीदारी कार्यक्रम माध्यमरे निशार कुप्रभाव संपर्करे सचेतनता सृष्टि करा जिवो। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियमरे कार्यक्रमर शुभारंभ अवसररे राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपाटी युवपीढ़ीकु निशामुक्त समाज गठन पई आह्वान देथिले। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिथिले आसंता 2 वर्ष चलिबाकु थिबा एही सचेतनता कार्यक्रम एक व्यापक सामाजिक जन आंदोलन। राज्य सरकार निशाद्रव्यर बेआईन कारबार विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अपणाई केवल आईनगत कार्यानुष्ठान नुहे बरं निशा पीड़ित पुनरुद्धार और पुनर्वास चिकित्सा केन्द्रगुडिक सुदृढ़ कर श्री माझी कहते।
2: निशा कारबार संपर्क आपण माने गोपन रे पुलिस को ए बाबत रे जणांतु एवं पुलिस ए कथा को गोपन रखिबो एवं जो माने निशा कारबार करूथिबे से व्यवसायी होंतु दलाल होंतु एवं जो पिला मान को प्रभावित करूछंती ये विषय जानिला मात्रे पुलिस को खबर देले निश्चित भाव रे पुलिस समानकर नाम को गुप्त भी रखिबो एवं दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवारे सरकार संपूर्ण भाव रे प्रस्तुत अछंती।
1: राज्यर 453 निर्दिष्ट केन्द्रे कार्यक्रमर सीधा प्रसारण करा। जाजपुर जिला व्यासनगरस्थित भिएन स्वयंशासित महाविद्यालय निशामुक्त युव भारत संकल्प अभियान आयोजित होइजैछि। कार्यक्रमरे जिल्लार विभिन्न स्थानरु आसिथिबा युववर्ग छात्रछात्री प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन शुणिथिले। युव समाजको निशाद्रव्यर कुप्रभाव विषयरे सचेतन करिबा ओ विकसित भारत 2047र स्वप्नको साकार करिबारे छात्रछात्रींकर सक्रिय भागीदारीको कार्यक्रम माध्यमरे उत्साहित करायैछि। बरगडठारे निशामुक्त युव भारत संकल्प अभियान अनुष्ठित होइजैछि। आयोजित कार्यक्रमरे युवपीढ़ीको निशा सेवनर कुप्रभाव संपर्करे वक्तामाने चेतन करिबा सह एक निशामुक्त समाज गठन पई संकल्पबद्ध हेबाकु आह्वान दिया जायथिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता काली थारु 5 तारीख पर्यंत ओडिसा गस्तरे आसिबे। कटकस्थित जगतगुरु कृपाळु विश्वविद्यालयर उद्घाटनी उत्सवरे आसंता काली जोगदेबार कार्यसूची रहिछि। मंगलबार राष्ट्रपति भुवनेश्वरु पूर्वान्हरे ब्रह्मपुर पर्यंत ट्रेन्रे यात्रा करिबे एवं ब्रह्मपुर तप्तपाणीथरे मा कंधुणी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजार्चना करिबे। राष्ट्रपति गस्तकु दृष्टि रखी भुवनेश्वर कटक एवं ब्रह्मपुर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कराजैछि। राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपाटी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राष्ट्रपति विभिन्न कार्यक्रम में जोगदेबे सूचना मिलिछि। क्रीड़ा क्षेत्र में ओडिशा एवं बिहार मिलीमिशी कार्य करिबे बोली बिहार क्रीड़ा मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह कहिछंती। भुवनेश्वर क्रीड़ा और युव व्यापार मंत्री सूर्यवंशी सुरसंक सह चारिदिनिया ओडिशा गस्तरे आसी सुश्री सिंह एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में आलोचना करिथिले। दुई राज्य मध्यरे क्रीड़ा क्षेत्र में सहयोग खेलाड़ी आदान प्रदान क्रीड़ा विज्ञानर व्यवहार एवं तृणमूल स्तर में नूतन प्रतिभा चयन उपरे बैठक में गुरुत्व दिया। क्रीड़ा क्षेत्र में ओडिशार उल्लेखनीय अग्रगति समग्र देश पई एक प्रेरणा बोली सुश्री सिंह कहिछंती। राज्यरे धीरे धीरे बन्या स्थिति सुधुरिबारे लागिछि। महानदीर जलस्तर ह्रास पाउथिबा बेले तळिया अंचलरे जलप्रवाह कमिछि। बन्या जोगु 22 ऊर्ध्व जिल्ला प्रभावित होइछि बोली राजस्व विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी कहिछन्ति। बन्या समय रे बहु घर एवं फसल क्षयक्षति होइथिबा रिपोर्ट सामनाकु आसुछि। एहार आकलन पई मानवीय दृष्टिकोणरु तथा संवेदनशील होइ जिल्लापालमानकु निर्देश दिया जाइछि। मंत्री कहिछन्ति क्षतिग्रस्त स्थानगुडी करे विद्युत सरबराह सड़क मरामति घाई मरामति आदि पई विभिन्न विभाग समन्वय रक्षा करि पुनरुद्धार कार्य जारी रखिछन्ति बोली मंत्री कहिछन्ति। जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री दिलीप राउत कहिछन्ति महानदी किंबा अन्य नदी रे वर्तमान बन्या आशंका नहीं परिस्थिति स्वाभाविक होबारे लागिछि बोली श्री राउत कहिछन्ति।
3: रेंगाली रिजर्वर रे आमे तो कंट्रोल करी मात्र गोटे गेट खोली छु जादरा पाखा पाखी 2000 क्यूमेक जल स्थल को प्रवाहित होउछे तादरा कोनसी बन्या हमर आशंका ही नहीं कारण आम जो बन्या फेस करथिले जेतरा गोटे बड़ प्लॉट पाइथिले पाखापाखी 8000 क्यूसेक्स तेणु से असुविधा होता एवं से कौन बन्या परिस्थिति नहीं।
1: आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्रर सूचना अनुसार राज्य में आउ 7 दिन पर्यंत वर्षा होबार संभावना रही। आसंता 24 घंटा मध्य बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होबा नहीं 23 जिला को सतर्क सूचना जारी करा। भद्रक जिला शाळंदी और बैतरणी नदी बन्यार 6 ब्लक में प्राय 5 लक्ष ऊर्ध्व लोक प्रभावित होता जिला प्रशासन पक्ष प्राथमिक

0: बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए। आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम रे आयोजित विकसित भारत पई निशामुक्त युव अभियान कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री अभिभाषण समय राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंभमपाटी, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं क्रीड़ा और युव व्यापार मंत्री सूर्यवंशी सूरज उपस्थित थिले। एही अवसर रे राज्यपाल श्री कंभमपाटी निशामुक्त समाज गठन पई राष्ट्र निर्माण कर्णधार छात्र छात्री मानंकु क्रीड़ा, फिटनेस, योग, संस्कार और समाज सेवा को ग्रहण करने को आह्वान देथिले। युववर्ग को उद्बोधन दे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिथिले यही अभियान कौनसी गोटे दिन कार्यक्रम नुहे, बरंग आगामी 100 सप्ताह पर्यंत चलिबाकु थिबा एक व्यापक सामाजिक जन आंदोलन।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व एवं तांकर नेतृत्व रे आज सारा देश रे 28,000 रु अधिक स्थान रे 2,26,00,000 रु अधिक युवक युवती एकत्रित होई निशामुक्त भारत गठन पई तमाने आज संकल्प नहीं छंती। 2047 सुधा एक समृद्ध विकसित भारत गठन पई आमर युवपीढ़ी होउछंती आमर प्रकृतरे विश्वकर्मा। एक शक्तिशाली राष्ट्र गठन पई युवशक्ति ए युवशक्ति किभरी भावरे निशा एवं कु अभ्यास रु दूर रे रहिबे आ सेथि पई ई व्यापक अभियान आरंभ हिछि। आम ओडिशा सरकार निशा कारबार विरुद्ध रे मध्य संपूर्ण भाव रे कठोर नीति अवलंबन करउछंती एवं ता सहित मध्य एहा विरुद्ध रे शून्य सहनशीलता बा जीरो टॉलरेंस ये नीति ग्रहण करिसंती आ सेति पई निशा कारबार विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान मध्य ग्रहण करा जाउछ। आमे केवल निशा कारबार करथुवा व्यक्ति को खाली गिरफ करू नाहु परम निशाग्रस्तंकर सम्मानजनक पुनर्वास पई मध्य सामाजिक स्तर रे एवं सामानंकु चिकित्सा करेबा क्षेत्र रे मध्य एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका आम सरकार निर्वाह करुछन। ये निशामुक्त ओडिशा ये एक केवल सरकारी कार्यक्रम नुह, ये होउछि एक जन आंदोलन। आपण मानकर माध्यम रे मु राज्यर समस्त नागरिक मानंकु अनुरोध करुछि निज अंचल रे हेउथिबा निशा कारबार संपर्क रे आपण माने गोपन रे पुलिस को एबाबत रे जणांतु एवं पुलिस ए कथा को गोपन रखिबो एवं जो माने निशा कारबार करुथिबे से व्यवसायी हुवंतु, दलाल हुवंतु एवं जो पिलामान को प्रभावित करुछंती ये विषय जानिला मात्रे पुलिस को खबर देले निश्चित भाव रे पुलिस समानकर नाम को गुप्त भी रखिबो एवं दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवारे सरकार संपूर्ण भाव रे प्रस्तुत अछंती। ये सामाजिक आंदोलन आगामी 100 सप्ताह पर्यंत अर्थात आगामी 2 वर्ष पर्यंत ये कार्यक्रम निरविच्छिन्न भाव रे चालू रहिबो एवं स्वतंत्र भाव प्रत्येक रविवार दिन मानकर एथिरे स्वतंत्र भाव खेलकूद माध्यम रे फिटनेस, योग एवं विभिन्न प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम माध्यम रे मध्य ये कार्यक्रम को स्वतंत्र भाव ये जारी रखा जिवो एवं एबे राज्य स्तर कार्यक्रम पर मध्य आमे जातीय स्तर कार्यक्रम सरिला परे एबे राज्य स्तर कार्यक्रम मध्य आमे आरंभ करिवु। राज्य स्तर पर जिला स्तर एवं तल स्तर पर्यंत ये कार्यक्रम ये लंबा समय धरिकरी ये कार्यक्रम रे सरकार संपूर्ण भाव रे इथरे कार्यक्रम रे जोड़ी हेबे। निश्चित भाव रे आमर बड़ प्राथमिकता होउची युव वर्ग को सेमानन को फिटनेस करिबा, सेमानन को सुस्थ रखिबा, सेमानंकर भविष्यत एवं स्वप्न को साकार करिबा पई सेमानन को सक्रिय भाव रे सुस्थ रखिकरी तांकर भविष्यत निर्माण करिबा। एणु निश्चित भाव रे आमे समस्ते एक संकल्प नबार जो समय आसीछि आमे संकल्प नबा निशा को ना एवं जीवन प्रगति को हाँ ये कथा को लेकर ये कार्यक्रम निश्चित भाव रे आगामी दिन रे ओडिशा रे संपूर्ण भाव रे सफल हबो एवं भारत वर्ष रे मध्य विकसित भारत गठन करिवारे युव नेतृत्व रे ता सफल हे परिबो।
1: लोकंक सुरक्षा ही सरकारंक सर्वोच्च प्राथमिकता बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछंती। से कहिछंती बन्या प्रभावितंक सुरक्षा, उद्धार, रिलीफ, पुनरुद्धार पई सरकार युद्धकालीन भित्तिर समन्वित पदक्षेप ग्रहण करुछंती। प्रभावित परिवार मानंकर निकटरे तुरंत सहायता पहुंचाइबा सह बन्या पानी ह्रास पर शीघ्र क्षयक्षति आकलन कर सहायता पैकेज प्रदान पई निर्देश दिया जाइछि। मुख्यमंत्री कहिछंती
2: बन्या परिस्थिति उपरे संपूर्ण भाव नजर रखा जाइछि। सेति पई मंत्री एवं अधिकारी

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। एसबीआई रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। केरला में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी

0: भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने

0: मां की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: आम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
1: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
5: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
1: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
6: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। परिवार तथा

0: व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य

0: समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
1: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi River recedes. Rainfall intensity decreases in Keralam, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
3: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of the nation. The Prime Minister also urged families not to hide cases of substance abuse due to social stigma.
3: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें।
2: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event, including My Bharat and National Service.

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ଶୁଣିଲେ ଖୟାଲ। ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଶିଳ୍ପୀ ପଣ୍ଡିତ ଉସ୍ତାଦ ବଡ଼େ ଗୁଲାମ ଅଲି ଖାନ। ଶିଳ୍ପୀ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ରାଗ ବସନ୍ତ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जलस्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रूपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह